0: को 188 देशों तक सुना जा सकता है। कहीं भी हो आप ये कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो आपको और ये संदेश छोटे रूप में हम सब यहाँ से अपने जीवन के ज्योति के प्रकाश डालने के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। राजेंद्र जी, आगे का वृतांत क्या है?
1: हाँ, आगे का जो वृतांत हमारा चल रहा था, आगे का वृतांत माधव दिग्विजय जी के अनुसार

0: हिंदसा दूषकः, अर्थात वो जो ओमकार को ईश्वरीय धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, गौपालक रहे तथा बुराइयों को दूर रखे, वो हिंदू है। केवल इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद में विव हिंदू नामक के बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा का वर्णन मिलता है, जिन्होंने 46,000 गौ माता दान में दी थी, और ऋग्वेद मंडल में भी उनका वर्णन मिलता है। बुराइयों को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहने वाले सनातन धर्म के पोषक व पालन करने वाले हिंदू हैं। हिंदुस्तु दुरितामह, अर्थात हिंदू सब लोग सदा ही शुरू से रहे हैं और रहेंगे, तो दुरितामह। आप इसके बाद हम चलते हैं एक सुंदर सा गीत की ओर, और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: राजेंद्र जी, सुंदर से गीत की ओर आगे बढ़ेंगे, पर आज बस यही प्रश्न है, क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई रॉय जी जो आइंदहोफ शहर से यहाँ उपस्थित है, स्टूडियो में है, और हम सब सूरीनामी है, तो क्या सूरीनाम हमारा प्यारा देश आज आप चलाने वाला है कि कार्यक्रम में कार्यक्रम, हम लोग का बिल्कुल समय नहीं है।
0: नहीं नहीं नहीं, वो जरूर चलेगा, क्योंकि आज यहाँ पे तीन लोग सूरीनाम कहे थे, सूरीनाम हमारा प्यारा देश क्यों नहीं चलाया जाएगा
1: एकदम से
0: एकदम से। लेकिन उससे पहले कोई दूसरा गाना रहेगा, इसके बाद हो रहा
1: जरूर जरूर
0: जरूर।

0: तोरा मन दर्शन करवाए। बहुत ही अच्छा। मन दर्पण जो है, मन का दर्पण का मतलब होता है, दर्पण मतलब होता है शीशा, ऐना। और जब शीशा के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारी ही शक्ल उसमें दिखती है। तो वैसे तो हम देख नहीं सकते अपनी शक्ल, लेकिन एक शीशा, शीशा मतलब दर्पण, जो सामने है वो दिखेगा। वही एक चीज़ है जो दिखा सकता है, दर्शा सकता है। तो अपने आप को अगर देखना हो तो शीशा में, वैसे मन दर्पण कहलाए। वैसे अपने आप आँख बंद करके अपने शरीर के अंदर जाके अपनी मन की आँखों को खोल के अपने अंदर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो मन का दर्पण है वो बहुत ही अच्छा है, वही दर्पण होना चाहिए। संजय जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे थे?
1: जरूर कहना चाह रहा था राजेंद्र जी, क्योंकि ऐसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति ने हमसे बोले
0: जी,
1: व्यक्ति ने बोले कि मेरे दादा ने, हम लोग कहते आ जाना,
0: हाँ,
1: दादा ने अपने कमरे से एक बड़का दर्पण लगाए थे।
0: हाँ।
1: उन्होंने कहा कि वो रोज बाहर निकल के अपने सभी कमरों में दर्पण लगाए थे, छोटे छोटे
0: जी,
1: पर अपने कमरे में एक इतना बड़ा दर्पण लगाए थे जिसमें वो पूरा शरीर दिखता था।
0: हाँ।
1: तो वो कह रहे थे कि मेरा दादा में ये था कि रोज वो बाहर जा करके जब लौट करके आए तो वो उसी दर्पण में देख करके अपने आप से ये प्रश्न करते थे
0: जी,
1: कि क्या हमने ठीक किया या क्या हमने गलत किया
0: जी।
1: तो उससे वो, उसे वो सीख मिलता था कि कुछ गलती हो जाता, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो ही जाता है। उसी से वो अपना गलतियों को संभालते थे, कि क्योंकि वो रोज अपने आप को देख करके अपने आप में वो प्रश्न रखते थे, और प्रश्न रख करके और अपने आप में सुधार कोशिश करते थे रखने को। तो इसी प्रकार से वो अपना और बनाए थे। आगे के कार्यक्रम में जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो शांता जी भी कुछ तैयारी करे हैं, और शांता जी आज मैं ऐसा आपके तैयारी के ओर नहीं जाऊंगा, पर एक ऐसा प्रश्न रखना चाहता हूं आपसे।
2: मैं तैयार होकर आई हूं।
1: पर शांता जी, कभी आपने किसी को सिर से चुरकी देखे?
2: हम बहुत ऐसे लोगों को देखती हूँ।
1: आप हमें देख रहे हो पर हमारे सिर से आप दिखाई नहीं देंगे।
2: चुरकी नहीं, राजेंद्र के सिर पर है चुरकी। एक ये कहते हैं पंडित जन को एक चूर के ऐसे लगाते हैं ना।
1: हाँ जी। हाँ।
0: ये रहे नमन।
1: हाँ।
2: वही तो हम देख रहे हैं।
0: एंटीना।
1: एंटीना।
2: एंटीना। हाँ।
1: हाँ। तो क्या उसका मतलब आपको पता है?
2: हाँ, मुझे पता है। उसके बारे में खोजबीन की तो मुझे कुछ हासिल हुआ। तो आपने पूछे सही वक्त पर सही प्रश्न, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हो?
1: उसी लिए तो ये प्रश्न को रखा गया शांता जी।
2: अच्छा, तो हम बता दें कि हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चोटियां रखती हैं, सिर पर चोटियां रखते हैं। आज भी लोग रखते हैं, वो तो सही। हम भी जब मंदिर जाते हैं या सड़क पर कहीं भी ऐसे व्यक्ति जो पास होते तो हम देख लेते हैं, तो जान पे पड़ता है कि ये कोई है। तो वैज्ञानिक तर्क ऐसा है कि जिस जगह पर चोटियां रखी जाती है, हाँ ये सिर पर ना, जिस जगह पर चोटियां रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती है, समझा?
1: तो उसी दिमाग, और आसान से कैसे आप कह सकेंगे
2: कि वहां पे नस जाकर जुट एकत्रित होते हैं,
0: इससे एकत्रित,
2: हाँ एकत्रित, एकत्रित।
0: हाँ, यानी कि
2: इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता।
1: चुरकी रखने से क्रोध नहीं आएंगे अभी, ऐसा?
2: ऐसा। और उससे भी है कि आप अभी अपना इंद्रिय और जो भी है ना उसको भी काबू में रखें,
1: अपने आप के कंट्रोल में,
2: अपने आप को कंट्रोल में। हाँ, तो ऐसा है कि चुरकी के महत्व
0: बहुत ही विशाल महत्व।
2: हाँ, सोच और तो, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है कि जो अंतेना है इसका मतलब क्या है।
1: आप भी चुरकी रखा है?
2: अभी राजेंद्र जी ने कहा ना उसका अंतेना है।
1: राजेंद्र जी, ऐसा क्यों, ऐसे करते क्यों, एक गीत के ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद में फिर थोड़ा से सूरीनाम, हमारा प्यारा।
0: हाँ,
1: देश
0: जरूर, गीत के भी बहुत अच्छे बोल हैं कि यह है गीता का ज्ञान, वो जरूर हम बढ़ाएंगे।

0: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।
1: तथास्तु।
2: इन दोनों दुष्टों ने मिलकर कैसी चाल चलाई, एक कंस मामा बन बैठा, एक दुर्योधन।

0: दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुंचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए। बोली जनता, बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा

खंड रचाए, ऋषियों को बदनाम करे, संतों पे दाग लगाए।

ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान अभी संजय जी आपने बड़ा ही अच्छा ढंग से सुना है, जो कि जिसकी फिल्म जो ऋषिकेश में बनी थी, और फिल्म में बहुत लोगों ने सराहा है उसको।

सूरीनाम हमारा प्यारा देश। तीन लोग आज यहाँ सूरीनाम के बैठे हैं तो उनका प्यारा देश इतना अच्छा है कि सब लोग एकदम झूम उठते हैं। अब बढ़ते हम आगे, लागी छूटे ना सनम। अब तो क्योंकि अब हमारा समय जो स्टूडियो से विराम की ओर बढ़ता है, तो चलते हम, लागी छूटे ना सनम, अब तो सनम।

लागी छूटे ना अब तो सनम चाही। ये जो जब ये गीत आता है, जब ये गाना बजता है, तो सब लोग और हम लोग भी यही देखते हैं कि अब हमारा हमारे श्रोता गण जो कि हमको इतने प्रेम से सुनते हैं, वो उनका भी मन कहीं ना कहीं इस गाने से ये लगता है कि हमारा पूर्ण कार्यक्रम पूर्ण की तरफ आगे हो रहा है, यानी कि और इस गाने से बहुत ही सबको और हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है कि लागी छूटे ना अब तो छूटना ही है। दोस्तों, सुनने वालों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। सुनने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारा इतना प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं, फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आते हैं, बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार, नमस्कार।

0: जब से
1: जिंदगी दो पल की है, जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है यहाँ, इसलिए कल को छोड़ो आज में जी लो। प्यारे सुनने वालों, देने सुनने के लिए बहुत से धन्यवाद। जो हमसे अनजाने में गलतियां हो गई हो तो माफ़ी हम आपसे मांगते हैं, स्वीकार कीजिए। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी के ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सब आज फिर और इकट्ठा होकर के कार्यक्रम को ज्योति का प्रकाश जो आपके लिए प्रस्तुत किया गया। आशा यही है कि अगले सप्ताह आप जरूर सुनते रहना। हमारे साथ सहयोग दिए शांता खिमाई जी, राजेंद्र सिंह जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए हैं, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

மல்ல

सुन रहे दीवाना हुआ बादल इंस्ट्रूमेंटल। सुनने वालों, यहाँ से कुछ अहम भोजपुरी फिल्मी भोजपुरी आपके लिए चुनकर रखी हूँ। तो यहाँ से हम सुनेंगे, पहला वाला है काहे बांसुरिया बजावले की

बड़ा सुंदर से लता जी की आवाज में आपने सुने सुने वालों की काहे के बसुरिया बजाय उले की चल गए ओकर सभी चैन और सुख।

0: अद्भुत जहर है। बोल
1: कैसे भाई लता जी की और उषा मंजेशकर जी की आवाज में आपने सुने सुंदर सा खूबसूरत सा ये भोजपुरी गीत जो आपके लिए नशर किया जाता है। ये वाला एक जाना पहचाना है, आप इसे भी जरूर से पसंद करेंगे।

0: हाँ भैया कर जा चुएला, आपने सुने
1: भैया?
0: लता जी के आवाज में साथ दे रहे थे तलत महमूद। हाँ सुनने वालों, यहाँ से आपके लिए पेश किया जाता है और इस बार है कि रखिया बना लो, ये भी भोजपुरी गीत है। सुनने वालों,

भाई, एक भाई के लिए उसकी बहन हमेशा बेस्ट फ्रेंड होती है। सुनने वालों, भोजपुरी गीत में भी इतना मिठास है कि सुनते सुनते आंख भर आता है, दिल रोमांच हो जाते हैं। आप सब सुनते हैं, आप पसंद करते हैं और आपके साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद आते हैं ये सब सुनने के लिए।

0: लता जी से हमने सुने सुने वाला फिल्म का नाम आपसे बता दे कि गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई बे, लेकिन तीन सेस तक के ये पिक्चराइज किया हुआ संगीत है सुने वालों, लता जी के आवाज़ में आपने सुने। तो आप सुनते हैं कि लता जी के आवाज़ उन दिनों कैसी थी और आज में वो तो नहीं, पर ऐसे सुंदर सुंदर संगीत हमारे खातिर जो छोड़ गए हैं, तो लता जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: ऊपर से चिल्लाए के दिन बती आवा, नीचे आवा।
2: हम ना आए तो हरे गरज होए तो तुम्हें काहे नहीं चढ़ आता।
1: कौने कही?
2: अरे गुड़वरिया से देखो तो नहीं हम सिर नकल हो।
1: देखत तो है बाकी ना भैया हम ना आए।
2: वो काहे
1: क्यों देख ली तो का कही तो ही आवा हाथ पकड़ा संभाल के धीरे से जिया हो जिया। अरे

बिटिया ही अखिया में खो गए। सुनने वालों आपने सुने आयल आयल बसंत बहार, सुनने वालों फिल्म आयल बसंत बहार। हाँ, भोजपुरी में ये पिक्चर का नाम भी, मूवी का नाम भी लिखा है। और आपने सुने गीता दत्त से और मन्ना दे के आवाज़ में, सुनने वालों

ना डर बे ना डर बे ना डर बे राम ना डर बे राम ना डर बे राम ना डर बे राम जान लेके जान लेके जान लेके हथेली पे चल गए जमाने से ना डर बे राम।

जमाने से ना डर गया, ना डर गया, जान लेके जान लेके हथेली से चल गया।

जब दिल लज्जा तो कोई किसी से डरते नहीं है। आपने सुने गीता दत्त से और मन्ना दे की आवाज में। सुनने वालों,

इस बार है फिल्म के नाम है भोजपुरी, भोजपुरी विदेशिया। हाँ, फिल्म का नाम है भोजपुरी फिल्म या विदेशिया फिल्म का नाम है।

क्षणिक संज्ञा के बिना भवनवा लागे ना ही जिया। गानवा के साथ है ढोलकिया, जो आप सुने तो कितना अच्छा लगे कि ढोलकिया के अंदाज से गनवन में कितना अच्छा लगे, हम आपसे क्या कहें।

मन्ना दे और महेंद्र कपूर से हमने सुने सुने वालों, और ये इसमें तो वार्तालाप हो रहे थे दिल वाले और पैसे वाले के बीच में। और आपको फिर से ले चलते हैं वही सुंदर सा फिल्म विदेशिया की तरफ।

I'm gonna go.

I'm gonna go to the hospital.

0: तार दिल तो दिल दान कुछ कुछ है जवान दिल न दिल में है जवान
1: तार दिल तो दिल दान कुछ न कुछ है जवान दिल न दिल में है जवान
0: दांत कटिए मोदी की नदिया पे भी बंधाई में गोलिया
1: दांत कटिए मोदी की पे भी बंधाई में गोलिया
0: नहीं बदले वक्त नहीं बदले वक्त तो जरे वक्त में लगाई में गोलिया
1: I'm
0: not going to be able to do that.

दे की आवाज में आपने सुने वालों, आपने सुने, आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और आप हम यहाँ से बढ़ चलते हैं संगीत संगीत प्रेम कार्यों के लिए।

हाँ जी मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में हम सब ने सुने कि सोनवा के पिंजरा में बंद भयले हाय राम। तो आप सुन रहे हैं सुनवाले भोजपुरी फिल्मी धुन, भोजपुरी गीत जो फिल्मी में से जो निकाला गया, फिल्म से निकाला गया सुनवालो, आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की। और आप सुनते हैं इसमें रंग बिरंग के गाना है जो हंसाते हैं, रोलाते हैं और वार्तालाप भी करते हैं, दिल के बयान इसमें भी है। अच्छा कैसे कैसे भी सब सभी तरह के गाना है भोजपुरिया में भी।

Faisal. Nah, jawab. Romantis, मस्ती भरे सुनहरे प्यार भरा गीत आपने सुने सुने वालों। हमारे भोजपुरी भी भोजपुरी गीत भी किसने क्या कमाल इस गीत में, जैसे हमने कहा गाना के अलावा आप जो सुन रहे थे इसमें म्यूजिक खासतौर पे ढोलक इसमें कैसे किस तरह से उसका अंदाज़ा इस भोजपुरी गीत में कितना अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, जी करता है बस सुनते ही रहें।

दोस्तों, आग, पानी और विश्वास जंगल में साथ चल रहे थे। आग ने कहा, अगर तुम मुझे खो देंगे तो धुएं की तलाश करना, क्योंकि जहां धुआं है वहां आग है। पानी ने कहा, अगर तुम मुझे भी खो देंगे तो नमी, नमी माने फोख्त की तलाश करना, क्योंकि जहां नमी यानी फोख्त है वहां पानी है। मित्रों, तब विश्वास ने कहा कि अगर मैं खो जाऊं तो तलाश मत करना, तलाश मत करना, क्योंकि एक बार मुझे खो दोगे तो फिर मुझे कभी नहीं पाओगे। तो मित्रों, इसका निचोड़ है कि विश्वास कभी के ना तोड़ना, धोखा नहीं देना, नहीं देना बहुत बुरी बात है।

हम संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते और परमात्मा से अलग कभी हो ही नहीं सकते।

भाई बहनों, दूसरों की भलाई करना कोई कर्तव्य नहीं है, ये एक खुशी की बात है। ये आपके स्वयं के स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है, जिससे आप सकारात्मक शक्ति के बिना अनुभव करते हैं मित्रों, और दूसरों के लिए कई अच्छे काम करते रहना चाहते हैं।

0: भाई बहनों, हो सकता है कि आप कई चीज़ों में परफेक्ट ना हो, लेकिन आपके अपने छोटे छोटे तरीकों से खास बने बिना कई चीज़ों परफेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पहले ये सोचे कि आप क्या करना और कहना चाहते हैं, जो आपको चरित्र और भविष्य को निर्धारित करता है। मित्रों, कृपया अपने और दूसरों के हित में इसे ध्यान में रखें।
1: धनी लोग दूसरे को नौकर बनाते हैं, पर संत लोग दूसरों को भी संत ही बनाते हैं।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नम माता पिता चरणम नम विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

मानव की सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गई है। सभी को एक शुभ प्रभात कहता हूँ।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिसके घर पे दुख है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपका दुख निवारण होए। जिनका घर में नया बच्चे ने जन्म लिए परिवार को हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

जो अपने तैयारी कर रहे हैं नौकरी के जाने के लिए, तो आपको कहा जाता है कि आपको फाइन अदाख्तु खवंस। जो तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ने के लिए, तो ये जरूर कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने सफर के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो ये मत भूलना कि श्री गणेश पहले तो आगे कार्यक्रम चलता है। जो और देश से हॉलैंड देश में और आए हैं फकांसी के लिए, तो आप सभी को हार्दिक से स्वागत किया जाता है। ऐसा सोचिए कि आप एक सुंदर सा देश में आए हैं। देशों में जो एक सुंदरता हॉलैंड के है, आप जरूर दर्शन करके दे आइए। और जो आज अपना मन में ये रख रहे हैं कि हमें अब सफर पे जाना है, हमें कुछ दर्शन करना है, तो जरूर आप अपना तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि कहते हैं कि ये सुंदर काया को हमें जो प्राप्त हुए हैं, इनके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं। और जब तक ये सुंदर सा काया हम सबके है, हम ना सिर्फ सत्संग ना सिर्फ सफर पर जो चाहे और अपने सुंदर शरीर से यानी कि अपने जीवन में जो करना चाहे, पढ़ना लिखना कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि संतों ने कहा है कि किस कारण हम इस दुनिया में आए हैं, जरा सोचो सरा और समझो सरा।

कहते हैं कि आने के बाद एक दिन जाना भी है और जाना कहाँ है बस यही बात को पता नहीं है।

सभी को एक शुभ प्रभात कहते हुए कुछ भजनों के साथ कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं।

ये फिल्म डायरेक्ट किया गया मनमोहन देसाई। कादर खान को जो जानते थे, जो परिवार में जिसे वो जुड़ा रहता था, तो उनको कहावत ये है कि अपना जब डायलॉग उनके लिखने के समय आते थे तो वो भारत छोड़कर हांगकांग चले जाते थे। वहाँ वो आराम से अपना डायलॉग्स आदि लिखते थे और फिल्म को और सजाया जाता था। सुनने वालों, ये स्क्रीन प्ले जो किए है वो है प्रयागराज शर्मा जी ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनंत बख्शी के लिखा हुआ लिरिक्स बाय अनंत बख्शी।

ये फिल्म जो पिक्चराइज किया गया पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी, पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी आईडी, उनके आइडिया से ये फिल्म को और लिखा गया। जिन भी कुछ कलाकारों अब नहीं है दुनिया में, अगर शायद आप अभी ये फिल्म देखे नहीं होंगे तो मैं कौन होता हो आपके सजेस्ट करने के लिए। यूट्यूब पे आप जरूर देख सकते हैं, कुछ 3 घंटा का फिल्म। इसमें ये सीख हमें मिलते हैं कि शायद हमारे और हम अपने भाइयों के साथ बिछोड़ गए होंगे, बहनों के साथ बिछोड़ गए होंगे। आज वो परिस्थिति आ गया कि शायद एक दूसरे को देखने को और तरसते हैं। तो जरूर इस फिल्म को देखें और इस पे जरूर अपना जो 2 घोड़े होते हैं हमारे दिमाग में, एक का नाम पॉजिटिव और दूसरा का नाम नेगेटिव, उनके इसके बारे में सोचने के अवसर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है जिसके आप ज्यादा खुराक देंगे वो ही जीतेगा।

सुनने वाले, ये फिल्म याराना से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, एक फिल्म जो 1981 में रिलीज हुआ, 1981 में रिलीज हुआ ये फिल्म, जिसमें स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान अपना कला से प्रदर्शन दिए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि याराना वही होता है। इस गीत को जब हम चलाते हैं तो हमें भी इस बार को हर बार याद आ जाते हैं कि हमारे पुराने रेडियो का कलेखा जैसे महेंद्र भाई, मित्र मनोज और इसी प्रकार से कितने जो दोस्तों अब साथ में नहीं है, तो जो साथ में है उन्हें हम जरूर याद करें और उनसे मिलते रहे, क्योंकि कहा जाता है हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। एक और सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

एक और फिल्म जो फिल्म 1981 में बनाया गया था, नसीब फिल्म से एक सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।

सुनने वालों, ये गीत जो निकाला गया फिल्म का नाम नसीब, जो 1981 में रिलीज हुए 1 मई 1981 को, बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर हिंदी रोमांटिक म्यूजिकल मूवी जिसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी ने बड़े बड़े एक्टरों के साथ और इसमें काम किए, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर।

कहते हैं कि दोस्ती इंतहाम लेते हैं दोस्तों, पर ऐसा ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं मिलता, अपने किरदार से इंसान खुद महकता है।

जिंदगी आ बैठ, है जिंदगी आ बैठ, कहीं चाय पीते हैं, तू भी थक गए होंगी मुझे भगाते भगाते। सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और यहां तक मैं आपके साथ जुड़े आ रहे। आशा यह रखता हूं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ चलाया गया। और यही आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा जरूर लगे होंगे। सुनने वालों, अगर आपको कोई ऐसा लगा हुआ होगा कि हमें अपना और सफ़र की ओर करना है, यानी कि सफ़र करना है अपना, और कोई प्रकार से जैसे भारत और ऐसे मलेशिया, कितने सुंदर सुंदर देश हुए जहां देखने के चीज बहुत है, जैसे कि कहीं भी जा सकते हैं और अपना सफ़र करने के, यानी कि फकंसीफिरन

जरूर अपना ध्यान रखना और ये बात मत भूलना, सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा पर भीड़ नहीं होता। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम सब कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर हमारे साथ आज फिर सहयोग दे रहे हैं शांता जी, और शांता जी से आग्रह करूँगा कि कुछ कहे फिर आगे बढ़ेंगे। और बबली जी भी आज स्टूडियो में उपस्थित है, तो आगे का कार्यक्रम हम सब धीरे धीरे उस ओर बढ़ेंगे।

कर्म कर, जिक्र ना कर, शुक्र कर, फिक्र ना कर। इसी वाणी के साथ शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। प्यारे सुनने वालों, आज के ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में जैसे हमारे साथी संजय जी ने कहा, हमारे साथ भी उपस्थित हुई है बबली जी। बबली जी,

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है।

0: शांता जी, क्यों ना हम सब हर सप्ताह के तरह और जो गीत चलाते हैं कि जो सुनने वालों अभी और कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार हुए हैं और
1: आगे बढ़ने से पहले आज तो बताओ कि आज के कार्यक्रम कैसा है।
0: आज का कार्यक्रम कैसा है?
1: हाँ,
0: तो ये तो अभी यहाँ प्रोग्राम बनाकर रख दिया गया है। क्यों ना बबली जी उसके बारे में बताते कि आज का विषय
1: क्या है।
2: आज का विषय है निरोगी काया के लिए घरेलू उपाय।
1: अच्छा,
0: निरोगी काया के लिए घरेलू उपाय। तो दोस्तों, आज के बड़ा मजेदार और विषय रखा गया है। अभी उस ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं, पर उस ओर बढ़ने से पहले क्यों ना हम वही गीत

बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े। तो शांता जी, जैसे कि आज का और हम सब अभी सुन चुके हैं कि आज का विषय है कि निरोगी काया के लिए घरेलू उपाय, तो इसका इसमें कुछ आप और कहना चाहेंगे कि इसका साहित्य निरोगी काया के मतलब लोग ना समझ पाए, पर ज़्यादा तादाद में सभी जान गए कि इसका मतलब क्या है, पर इसे थोड़ा से और हो सके तो आप निचोड़िए।

0: रोगी मतलब खसोंद, नीदरलैंड्स में कहते एकदम खसोंद, निरोगी काया, काया देह के कहते बदन को, ये शरीर को काया कहते, तो खसोंद लेखाम।
1: बबली जी भी इस पे कुछ और दृष्टि डालना चाहते हैं।

0: शांता जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, निरोगी जिसमें कोई रोग ना हो, निरोगी काया। और घरेलू उपाय कि घर में ऐसे उपाय जो हम घर में ही कर सकते हैं।
1: तो हम अभी उस पे उस ओर बढ़ने वाले हैं जरूर, पर घरेलू ये निरोगी काया इस पे जैसे कि आप लोग दोनों ध्यान दिए हैं कि काया के मतलब है जो पांच तत्वों का बना हुआ ये शरीर हमारा,
2: ये शरीर जी,
1: और उनके लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं उन्हें तंदुरुस्त रखने के लिए।
0: हाँ जी,
1: सिर्फ हम सब जो हमारे पास जो विषय के बारे में खोज के रखा गया है कि उस पे ही ध्यान देना है, और आगे हम लोग के लिए, हम लोग के ये काया के लिए इसमें कोई प्रकार के परिवर्तन होने वाला है या कौन प्रकार का संदेश है आज
2: जो यहाँ से आज हम बताएंगे, तो आप इसे जरूर से सुने और हो सके तो भी इसे आप भी प्रयोग करें। अगर आप प्रयोग करेंगे तो इसमें आप सुधार देखेंगे, बदलाव आएंगे, और फिर आप भी जैसे अपना जीवन भी गुजार रहे हैं डॉक्टर के अनुसार और अपने चेतन के अनुसार, तो उसमें भी आप थोड़ा से इसमें देखो क्या आपके लिए लाभदायक है इसमें।
1: शांता जी बहुत सुंदर रूप से जो अपना और संदेश हम सबको सुना रहे हैं कि ऐसे आप कैसे इस ये तेमा से कैसे आप अपने को और यानी कि इसमें से कौन प्रकार के लाभ आप उठा सकते हैं, जरूर इस पे हम सब घरेलू, सीधा लिखा गया कि घरेलू उपाय। ऐसे पहले सरनाम में हम सब रहते थे शांता जी, तो जितना आजकल हम सब डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, पहले तो ऐसे नहीं होता था ना।
2: ना पहले तो ऐसे सूरीनाम जैसे ना हम खेत में रहते थे, अगर कटलिस लग जाए या कट जाए ऐसे कुछ भी चीज़ें ऐसे, तो आप जानते हैं मोको उसका खोरोज के और कर को जो है ना मोको का पेड़ जो है,
1: हाँ जी,
2: उसका खोरोज के और जहाँ पे कटा हुआ है ना जो घाव है उस पर रख कर और बांध देते थे,
1: और तो, फिर जब घास काट रहे थे तो फिर घास आगे काटो।
2: हाँ, और वो जल्दी से अच्छा हो जाता था
1: ऐसा।
2: हाँ
1: तो दोस्तों आज अभी हम सब ये घरेलू बातें कितने और भी सुनेंगे, पर बबली जी भारत में कैसे होता था, क्या वहाँ पर जैसे कि जुखाम बुखार लग गया तो सीधे डॉक्टर के पास चले जाते थे, पेट में थोड़ा सा दर्द है तो सीधे डॉक्टर के पास, या घरेलू और उपायों को प्रयोग किया जाता था?
0: पहले तो गांव वगैरह में नीम हकीम होते थे, वैद्य वो इलाज करते थे, डॉक्टर कहाँ थे पहले भारत में, और बाद में शहरों में डॉक्टर ज़्यादातर आने लगे, तो फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। अगर जुखाम है तो हमारी मम्मी बस विक्स लगा देते थे, हो गया, और कुछ कट गया तो हल्दी लगा देते थे।
2: देखो वो भी हम सिर नाम है मोको खबर एक कर रहे हैं, देखो भारत में हल्दी।
1: हाँ, तो इस प्रकार से दोस्तों अभी और जानकारी हम सबको मिलने वाले हैं। पर शांता जी ये तो मैं देख रहा हूँ आज जैसे कि पिटारा साज भर के लाए हैं आप सुंदर सुंदर गीतों, तो ये अपनी निरोगी काया के लिए आप तो हम सबको भी एकदम नौजवान करने वाले हैं।
2: यही तो हमारा लक्ष्य है,
1: ये हमारा लक्ष्य है, ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य यही है कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में जो जोत चल रहा है तो उसमें और प्रकाश आवे। क्यों ना हम सब पहले एक झलक देख लेते हैं तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा होवे या आप ही बोलो शांता जी?
2: नहीं, आप जो शुरुआत कर दी तो उसका भी अंत करो।
1: दोस्तों हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, तो फिर हम सब अभी काफी जानकारी है निरोगी काया के लिए और घरेलू उपाय हम सब अभी आपसे और सब यानी कि ये संदेश को बांटने वाले हैं। आप बस जरूर कार्यक्रम के सुनते रहना और देखेंगे कि शांता जी कौन कौन सा सुंदर सुंदर गीत को लेकर आए हैं, उसे भी हम सब

0: तो दोस्तों, हम सब कार्यक्रम में जोर तोर से इस समय जो आज का विषय है, तो हम सब उसके बारे में चिंतन भी हो रहा कि कौन कौन बातें होगा और ये सुंदर काया को जो हम सबको प्राप्त हुआ, ये सुंदर शरीर को हम सबको प्राप्त हुआ है, तो घरेलू सामान हम सब यानी कि जो घर पे आप प्रयोग कर सकते हैं तो क्या क्या है। हमारे साथ हमारे भाई भी जुड़े हुए हैं टेलीफोन पे और ये भी कह रहे हैं कि भाई ये ना भूलियो कि पहले सरनाम में शांता जी बोले कि खिल्ला गड़ जाता था।
1: हाँ?
0: खिल्ला गड़ जाते थे और कहीं पे और यानी कि जोंची इन्फेक्सी हो जाता था तो बोले बलाका तेई।
1: बलाका तेई, हाँ,
0: बलाका तेई से भान देते थे और उसे और जा करके कोई क्लेम के इंजेक्सी आदि नहीं लेना पड़ता था।
1: वाकई में अभी बत्ती जार करता था।
0: बत्ती जार, ये सब अब शुरू हो गया है सुनने वालों कि कौन कौन सा हम सब घरेलू सामान किया और करते थे। पर बबली जी, आप हम सबको कुछ और संदेश देने वाले हैं जिसे हम सब के लिए जो जानकारी लेकर आए हैं, तो पहला वाला आपकी ओर से क्या है?

0: पहले वाला मेरी ओर से है आंवला।
1: आंवला तो ये क्या चीज होता है बबली?
0: आंवला एक प्रकार का फल है, उसका अचार भी बन सकता है, मुरब्बा भी बनाते हैं। मुरब्बा मीन्स उसको मीठा बना के रख देते हैं, वो एक दो साल तक चलता है, उसे मुरब्बा कहते हैं। और जो आंवला होता है उसको उबाल के अचार बनाते हैं, वो उसी टाइम खा सकते हैं।
1: आंवला इसे किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मिलता है हॉलैंड में कि नहीं?
0: पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल जितने भी इंडियन शॉप है सब में मिलता है आंवला। हरे रंग का होता है, छोटा सा,
2: जैसे ओलाइव।
0: ओलाइव तो मीठा होता
2: नहीं, है जैसे ओलाइव।
0: हाँ जी, ये थोड़ा खट्टा।
2: हाँ,
0: थोड़ा
2: खट है इसमें, बहुत खटास है।
0: हाँ हाँ हाँ।
2: पर दिखता है जैसे ओलाइव।
0: हाँ, ऐसे गोल गोल
2: गोल गोल।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो इसे कैसे, जैसे कि आपने कहा अचार और कुछ और बना,
0: मुरब्बा
1: मुरब्बा मुरब्बा
2: मुरब्बा अगर जैसे बबली ने बताई, जैसे स्टोफू केरसी ना।
1: ओ, स्टोफू केरसी जैसे हम लोग करते थे सुरीनाम में।
2: सुरीनाम जैसे स्टोफू केरसी, मोपे ऐसे स्टोफू करके, तो भारत में कहते हैं मुरब्बा।
0: सही बात शांता जी।
1: तो उसे मुरब्बा कहते। तो दोस्तों ये भी जान लो कि मुरब्बा क्या चीज है, और वैसे नाम तो बड़ा है पर वही स्टोफू है, जैसे हम सब जानते थे सुरीनाम में कि स्टोफू मोपेई, स्टोफू केरसी, और क्या स्टोफू किया जाता था शांता जी?
2: इमली।
1: इमली,
2: बिरांबी।
1: बिरांबी, या, या, या, या सही बात कह रहे हैं। पर
2: ऐसे सब कुछ है ना, पोमराग भी स्टोफू किया जाता था।
1: वो तो शांता, वो तो कंडाल में किया जाता था।
2: उसका श्याम बनता था, और अमरुद के भी,
1: अमरुद का भी। तो दोस्तों तो, जैसे कि आपने सुना कि आंवला, पर बबली जी ये बताइए, हर बार और या रोज प्रयोग करना चाहिए, और उसका फल क्या है?
0: आंवले को किसी भी रूप में थोड़ा सा आंवला रोज खा सकते हैं, और जीवन भर उससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नहीं होगा और हार्ट फेल नहीं होगा।
1: तो इसमें ये कीमत है कि आंवला का, और ब्लड प्रेशर कहते हैं शांता जी,
2: ब्लूड्रिक
1: तो वो नहीं होता है, और
2: हार्ट फेल
1: यानी कि जो कहा जाता है हार्ट अटैक,
0: हाँ जी,
1: तो वो नहीं होता है। तो दोस्तों ये बात है कि हम सब के लिए घरेलू सामान कैसे प्रयोग करना है, और उसके बारे में कुछ न कुछ और जानकारी हम सब लेकर आए। शांता जी कुछ कहने वाले हैं।
2: हाँ, अब मेरे ख्याल से बबली, अगर आप इससे प्रयोग करेंगे ना, जैसे हमारे सुनने वाले सुनते हैं, तो एक ज्यादा मात्रा में नहीं, औषधि के तरह।
0: हाँ, थोड़ा सा।
2: हाँ,
0: एक दिन में आधा खाओ या एक खाओ, ज्यादा खाओगे तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: क्योंकि ये खट्टा है ना, अधिक खट्टा, जैसे लेमच।
0: हाँ, खट्टा भी है और थोड़ा कड़वा भी कह सकते हैं, दोनों है।
2: हाँ,
0: खट्टा कड़वा पानी इसमें।
2: हाँ, तो एक औषधि के और तौर पे इसके इस्तेमाल करना चाहिए,
0: थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए,
2: थोड़ा से।
0: हाँ जी,
2: क्योंकि इस खट्टे के वजह से रक्त भी, जैसे हम आजकल जब यहाँ पे ब्लड फॉर डोनर खबर करते हैं,
0: सही बात।
2: हाँ, तो ये खट्टा के वजह से ये खून को भी पतला रखेगा।
0: हाँ,
2: अगर हम सही हो तो।
0: वो मैं नहीं जानती।
1: क्योंकि ये बात हो जाता है बबली जी, वही कहना हम सबको, जो हम सब ये रेडियो स्टेशन द्वारा जो 188 देशों तक सुना जा सकता है, और हम वही संदेश दे जिसमें हम अपने आप के, और जो हमारे पास लिख कर दिया गया है उसी को बांटे ना शांता जी।
2: हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे हैं।
1: और ये बात हो जाता है कि आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आ गया है एक व्हाट्सएप बरिख, तो अगर आप लोग के कोई इतराज ना हो तो हम उसे भी सुना देते हैं।
0: सुनाइए।
1: तो शांता जी, यहाँ बरेख्त आया कि चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, अगर आप खुद के लिए कम जीते हैं और दूसरों के लिए ज्यादा, तो इसमें क्या आंवला या कुछ और उसमें आपका सहयोग देगा?
2: तो
1: इस पे ध्यान देना, क्योंकि संदेश हमारे लिए भी भेजे जाते हैं, और कुछ कुछ संदेश जो हम सब जरूर सुनाने के कोशिश करेंगे।
2: हाँ संजय जी, जैसे आपने कहा चिंता, तो चिंता में अगर कोई व्यक्ति रहेगा ना तो खुद जलेगा, है ना?
1: जी सही बात, सही बात शांता जी।
2: और जो निश्चित में रहोगे तो
1: चिंता, बोले चिंता को छोड़ दो।
2: हाँ, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना चाहिए।
1: चिंतन करे पर चिंता को छोड़ो।
2: हाँ,
1: मैं देख रहा हूँ बबली जी भी कुछ इशारा कर रहे हैं, तो इशारों में भी सुन लेना चाहिए।
2: इशारों में।
1: हाँ, तो चलो बबली जी आपका क्या सुनाने वाले हैं?
0: ना, मैं ये कहने वाली हूँ, कई चिंता करते हैं कि हमारा पड़ोसी क्यों सुखी है, वो इसी चिंता में घुलता जाता है और खुद का रोग पाल लेता है।
1: चिंता करता है कि हमारा पड़ोसी क्यों सुखी है और खुद के और अपने बुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये अच्छी अच्छी कहावतें हैं और अच्छे अच्छे संदेश जो हम सब आज निरोगी काया, जो हमारा शरीर है उसे हम कैसे निरोगी का रख सकते हैं और उसका कि कैसे हम उनमें घरेलू चीज़ों से उन्हें कैसे निरोगी रख सकते हैं। शांता जी, क्यों ना हम एक दूसरे गीत की ओर बढ़े या कुछ और संदेश है?
2: हाँ, एक और कर ले सुनना है,
1: क्योंकि संदेश ज़्यादा है ना।
2: हाँ,
1: तो बबली जी क्यों ना दूसरा संदेश हम सबको सुना देते, तो फिर हम सब एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: हाँ जी, दूसरा है मेथी।
1: मेथी,
0: हाँ जी।
1: तो मेथी कैसे प्रयोग करते, पहले ये तो बताइए कि मेथी को नीदरलैंड्स में क्या कहते हैं? शांता का पता नहीं, मुझे पता नहीं, तो वो कैसा दिखता है मेथी?
0: मेथी पीले रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको कड़ी में भी डालते हैं।
1: दोस्तों, मेथी पर उसे कैसे प्रयोग करना चाहिए और उसका लाभ क्या है?
0: हाँ जी, मेथी दाने को पीस कर रख लें और एक चम्मच एक गिलास पानी में उबाल कर रोज़ पिए, और उसमें ना मीठा डालें ना नमक, कुछ भी ना डालें, वैसे ही पिए।
1: वैसे ही पी लेना चाहिए।
0: हाँ जी।
1: और उसमें भलाई क्या है?
0: इससे ये भलाई है कि इससे आव नहीं बनेगी।
1: अच्छा।
0: आव का मतलब है शरीर में ऐंठन और मरोड़ नहीं होंगे।
1: ऐसा?
0: हाँ जी। और शुगर कंट्रोल में रहेगी।
1: शुगर भी कंट्रोल में रहता है?
0: हाँ जी। और जोड़ों के दर्द नहीं होंगे और पेट ठीक रहेगा।
1: पेट भी ठीक रहेगा?
0: हाँ जी।
1: तो दोस्तों ये सुन लेना, क्योंकि मेथी जो शांता जी ने खोज करके और तैयार कर चुके हैं, तो मेथी, शांता जी आप खुद ही बोल दीजिए, मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा, फेनेग्रीक कहा जाता है। ऐसा है कि आप शायद आप जानते होंगे कि मेथी क्या है, तो उसके लाभदायक चीज़ें जो अभी बबली जी ने हम सबको सुनाए हैं, जरूर उस पर ध्यान देना। उसे भी प्रयोग करके आप अपने घरेलू सामान से अपना शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं।

कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हम सब इस समय लेकर के यहाँ आज निरोगी काया के कैसे हम सब कर सकते हैं, तो हम उसी के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। और बबली जी, अगले कार्यक्रम के लिए अगले संदेश क्या है?

0: अगला संदेश है नेत्र स्नान।
1: नेत्र स्नान तो वो क्या चीज होते हैं?
2: नेत्र स्नान
0: जैसे आंखों को धोना, आंखों की देखभाल करना।
1: आंखों को धोना और आंखों को देखभाल, पर वो कैसे करेंगे? कैसे?
0: मुंह में पानी का कुल्ला भरकर नेत्र धोएं।
2: अब वो कैसे?
0: जैसे मुंह में पानी भर लो और हाथों से आंखें धोएं।
1: तो इस प्रकार से आप अपने आंखों को रोज उसे धोने से और आंख में कुछ परिवर्तन होता भी बबली जी?
0: ऐसा दिन में 3 बार करना चाहिए। जब भी पानी के पास जाए मुंह में पानी का कुल्ला भर ले और नेत्रों पर पानी के छींटे मारें और धोएं।
1: नेत्रों यानी कि आंखें पे?
0: हाँ जी। मुंह का पानी 1 मिनट बाद निकाल कर दोबारा कुल्ला भर ले।
1: ऐसा?
0: हाँ जी। मुंह का पानी गर्म ना हो इसलिए बार बार कुल्ला नया भरता रहे कि बार बार उसे भरते रहे कि वो गर्म ना हो मुंह में। तो
2: मुंह में पानी भर कर फिर नेत्र पे छिटका मारना पानी के?
0: हाँ जी।
2: ऐसा?
0: भोजन करने के बाद गीले हाथ तौलिए से नहीं पहुँचे बल्कि अपने दोनों हाथों को रगड़ कर चेहरे व कानों तक मलें।
2: ऐसा?
0: हाँ जी।
1: ये संदेश है भोजन करने के बाद।
0: हाँ जी। गीले हाथ को हांदुक से ना पहुँचे, तौलिए से ना पहुँचे और दोनों हाथों को रगड़ कर आँखों पर लगाएं।
1: ऐसा? और ऐसा करने से आंखें के लिए ठीक होता है?
0: हाँ जी। इससे आरोग्य शक्ति बढ़ती है और नेत्र ज्योति ठीक रहती है।
1: नेत्र ज्योति भी ठीक रहती है। तो दोस्तों ये बात है कि हम सब जो आज का निरोगी काया के लिए और घरेलू उपाय जो लेकर आए हैं तो अभी आपके लिए काफ़ी संदेश है। पर शांता जी इसमें कुछ आप संदेश रखने वाले हैं?
2: नहीं, ये तो मैं आज पहली बार सुनी हूँ। इससे हम जरूर प्रयोग करेंगे घर पे जाके कि मुंह में पानी भर कर कुल्ला बना कर और फिर से पानी से छिट्टा मारे आँख पर।
0: लेकिन शांता जी योग में तो जरूर ऐसे हाथ रगड़ कर आँखों पर लगाते हैं तो?
2: हाँ हाँ, जब मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा कराते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: तो इस प्रकार से करने से हमारे आँखों के लिए बढ़िया होते हैं। यानी कि हम ऐसा भी है कि इसमें ये भी संदेश है शांता जी कि हमारे आँखी और बढ़िया हो सकता है या सिर्फ आँखी के उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ये करना चाहिए?
2: आप तो इसके बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है। अब जैसे हमने आज पहली बार ये सुना है तो इससे हम प्रयोग करेंगे। अगर हाँ प्रयोग कर देखेंगे 3 या 4 महीने बाद तो इसके बाद हम कुछ बता सकते।
1: यानी कि अपने आप पे और uitproberen en dan kunnen we daarover meer zeggen। दोस्तों यहाँ हमारे कार्यक्रम में भारत देश से जो भी सुना जा रहा है और भारत देश से भी किसी ने फिर एक संदेश भेजे है शांता जी, पर यह संदेश तो मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ है। सुना सकते हूँ या नहीं?
2: अब मैं पहले से नहीं सुनी हूँ तो मुझे नहीं पता है कि गड़बड़ क्या है और अच्छा क्या है तो।
1: क्योंकि ये संदेश हमारे भैया जी भारत उत्तम नगर से भेजे हैं और संदेश ये है कि पत्नी ने अपने पति को कुछ इशारा करते हैं।
2: और क्या इशारा करते हैं?
1: पत्नी ने पति को इशारा कहते कि चलो, ये है कि जब नवरात्रि आता है ना, साल का दूसरा नवरात्रि आता है तो दशहरा होता है, कि चलो दशहरा देखने के चलते हैं। तो पति कहते हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो रावण दहन देखने चलूं। तो पत्नी कहते हैं आप भी चलकर देख लो, दूसरों के बुरी नजर से वाले को और क्या हाल होता है। तो ये संदेश तो नवरात्रि के में ज़्यादा सूट होता, पर अच्छा चलो ये भी सुना दिया गया है। भारत देश से जो हमारे भाई और राजीव शर्मा जी जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं भेजे हैं, पर ये इस पे थोड़ा से दृष्टांत डाला जाए। शांता जी आपको ख्याल होगा कि दशहरा पे हम सब जब छोटे थे सूरीनाम में ना,
2: हाँ जी,
1: तो रामलीला जाते थे देखने को।
2: हाँ।
1: और इसी विषय पे जब हम छोटे थे तो हमें ये कुछ ख्याल आ गया। हमें ये ख्याल आया कि मैं पहला बार अपने पिता के कंधे से बैठ कर के, ये तो बड़ा पुराना बात है, 50 साल से ज़्यादा बात है, पर गए थे पहला बार रामलीला मैदान, तो दूरी से दिखाई दिया बड़ा सा और पुतला रावण का।
2: हाँ जी।
1: तो देख करके वो तो हम घबरा गए थे।
2: अच्छा।
1: मुझे अभी भी याद है कि किस प्रकार से मैं डड़क गया था और वहाँ से फिर दोबारा लौटने का इच्छा कर रहे थे, पर गया तो बड़ा रोते रोते गए वहाँ, और वो पहला बार जब देखे ना रावण को तो कितना भयानक लगता था। बबली जी, इस पे आपके क्या बात है, आप कभी उसे डरे थे कि नहीं दशहरा से?
0: नहीं, क्योंकि रामायण में हमेशा सुनते आए हैं कि रावण ऐसा था। तो
1: पर जब छोटे थे तब नहीं डरे थे वो पहला बार रावण को देखकर, वो जो पुतला बनाया था?
0: नहीं नहीं, रावण को रावण को जानबूझकर ही इतना डरावना बनाते हैं कि वो देखने में डर जाए सब।
1: जानबूझ के उन्हें डरावना बनाया जाता है।
2: संजय जी पूछ रहे थे कि आप रावण को देखे, तो रावण को कहां हम देखेंगे।
1: नहीं नहीं, उनका पुतला का बात हो रहा था दोस्तों। हम भटक रहे हैं
2: जी। अच्छा, हाँ,
1: हम भटक रहे थोड़ा। जो संदेश आता है तो उन्हें कोशिश किया जाता है आपको सुनाने का, और ये बात है शांता जी, इस पे थोड़ा सा और कहना चाहूंगा कि पहले जो हम बच्चे थे ना, ऐसा होते थे कि हम सबको डर होते थे, खाना नहीं खाते थे, तो दादी ये कहते थे कि खा ले वरना बबुया आ जाएगा, और इन बातों को दरवाजा पे ठोकते थे तो हम डर जाते थे, डर के मारा खा लेते थे। पर आजकल के बच्चे में ये चीज तो रही नहीं गया।
2: वो क्यों?
1: क्योंकि आजकल बच्चे को तो कहेंगे कि बबुया आएंगे तो वो उन्हें मानते नहीं। तो दोस्तों हम चलते हैं बबली जी की ओर, और बबली जी संदेश क्या है आज के जो निरोगी काया के लिए?
0: हाँ जी, अगला संदेश है शौच।
2: शौच,
0: शौच मीन्स टॉयलेट, वी से।
1: हाँ।
0: ऐसी आदत डालें कि नित्य शौच जाते समय दांतों को आपस में भींच कर रखें, इससे दांत मजबूत रहेंगे तथा लकवा नहीं होगा।
2: जाने के बीच मतलब
0: ऐसे दबा कर रखें दांतों को।
2: हाँ। स्थान दोपल कार हाँ
0: हाँ
1: हाँ, ऐसा रखना चाहिए।
0: हाँ, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो।
1: दोस्तों जैसे कि हम सब सुन रहे हैं कि काफी संदेश है, और जो घरेलू और उपाय जो हम अपने आप के लिए उसे प्रयोग करें, और अपना शरीर जो 5 तत्व का बना हुआ शरीर, उन्हें सुंदर रूप और सुंदर काया के सुंदर रूप रखे रहे। अगला संदेश क्या है बबली जी? क्योंकि हमारे पास एक सुंदर गीत और आ गया है जिसे सुनाने का इच्छा है।
0: आगे का संदेश है छाछ।
2: छाछ,
0: छाछ मीन मट्ठा, लस्सी, लस्सी भी कहते हैं उसको। हाँ। पतला दही जिसमें से मक्खन निकाला गया हो उसे छाछ कहते हैं।
1: तो वो दूध से बंद है?
0: हाँ जी, लस्सी, मट्ठा, छाछ ये एक ही चीज़ है, और कहने का ढंग अलग अलग है।
2: अच्छा।
0: हाँ जी,
2: जिसमें से माखन निकाल लिया हो।
0: हाँ जी,
2: तो
0: हाँ,
2: जो बचा हुआ दूध उसको छाछ कहते हैं।
0: हाँ, मट्ठा भी कह सकते हैं, छाछ भी कह सकते हैं, और लस्सी भी कहते हैं।
2: लस्सी भी कह सके। तो संजय जी, इसको यहाँ पे कैसे कहते हैं, माखर, माखर योगर्ट?
1: अब आपने तो मुझे
2: कंफ्यूज कर दी,
1: कंफ्यूज कर दिया क्योंकि यहाँ तो कितने प्रकार के हैं दूध का, यानी
2: योगर्ट
1: जो प्रोडक्ट होते हैं ना
2: जी। अगर हम ख्याल करें, याद करें, तो हम सूरीनामो में भी दूध जो हम उसको फेंटते थे ना, तो उसमें से जो माखन निकला था ना।
1: हाँ।
2: बोतर घी जो हम उसके बाद में कढ़ाई में धर के, तो जो पानी बच जाता था।
0: हाँ जी शांता जी, उसी को मट्ठा या लस्सी कहते हैं, और ये छाछ भी कहते हैं।
2: हाँ।
1: तो इसमें तो थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन आ गया, क्योंकि शांता जी वो बनाते थे साड़ी निकाल निकाल करके ना,
2: तो उसको घी बनाते थे।
1: वो तो घी था।
2: हाँ, पर जो बच जाता था उसको दही कहते हैं। मेरे ख्याल
1: दही कहते हैं।
2: हाँ, माठा और दही।
1: तो दोस्तों उसे भी
2: माठा जो उनके जमावल जाए ना।
0: हाँ,
2: हाँ, उसको
0: वो गाढ़ा होता है तो। हाँ, और जो छाछ या लस्सी वो थोड़ी पतली होती है।
2: हाँ,
1: और इसे भी आप जरूर यानी कि मेलक प्रोडक्ट जरूर प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को और जो
2: नहीं नहीं मेलक प्रोडक्ट ये छाछ कुछ और है।
0: हाँ जी, छाछ का निरंतर सेवन बहुत अच्छा है। सुबह और दोपहर के भोजन में जरूर छाछ लें और भोजन में पानी के स्थान पर छाछ का उपयोग अच्छा माना गया है।
1: शांता जी ये बात तो नहीं हो गया पर दूध से निकलता?
0: हाँ हाँ हाँ, अरे लस्सी भी तो वही है। पंजाब में लस्सी कह देते हैं और जगह छाछ कह देते हैं। जितने भारत में स्थान है सब अलग अलग बोलते हैं, तो कहीं छाछ कहीं लस्सी कहीं माठा,
1: ऐसा।
0: हाँ जी,
1: तो दोस्तों हम सब सुने कि छाछ जो हम आज ये शब्द सुने हैं और उसे भी प्रयोग करना चाहिए और ये खाने के समय।
0: हाँ जी, और गांव में जब हम जाते थे अपनी नानी के घर तो वहाँ पर मामा वगैरह पानी नहीं पीते थे, वो भोजन में लस्सी या छाछ ही पीते थे।
1: अच्छा, चीनी डाल कर की ना?
0: ना ना ना, नमक डालकर, काला नमक।
1: काला नमक डालकर?
0: हाँ जी।
1: तो क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत के ओर पर शांता जी कुछ कहने वाले कह दो तो हम।
2: हम इससे जैसे मेरे को ये सब जानकारी नहीं थी तो लगे हाथ ये ज्योति का प्रकाश जैसे चल रहा है ऐसे ऐसे यहाँ पे हमको मिलते हैं सुनने के लिए साथ में हमारे सुनने वालों को, तो यहाँ पर मैं भी जैसे सुनी तो हम भी ये सब प्रयोग करेंगे, देखेंगे कर।
1: जरूर जरूर शांता जी, क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत आपके पिटारा से निकाले हुए और उसे सुना देते अपनी सभी सुनने वालों को, क्योंकि सुनने वालों आज जो सुंदर सुंदर गीतों को शांता जी लेकर आए हैं बिल्कुल हम सबको एकदम जवान करने वाले हैं, तो देखते हैं कि कौन सा गीत है।

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
2: दोस्तों ये जरूर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर आपके साथ और यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब ये कार्यक्रम को आपके घर, आप जहाँ भी है, दुनिया के कोई भी देश में हो, आप अपने कार में भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो हम सब अपना संदेश लेकर आपके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बबली जी, कार्यक्रम जो आज का है विषय कि हम अपने निरोगी काया के लिए घरेलू के कैसे सामानों को प्रयोग कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, तो आपके और कौन सा संदेश है जो आप हम सबको सुनाने वाले हैं?
3: हाँ जी, और संदेश है सरसों का तेल।
4: सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल।
3: हाँ जी शांता जी,
2: सरसों का तेल, ये फिल्म जो शाहरुख खान का बना था ना, क्या फिल्म था, सरसों का खेत में
3: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
2: हाँ, तो वो सरसों का तेल उसी से बनते हैं।
3: हाँ जी, पहले सरसों उसको साग बना के खाते हैं, फिर उसके बाद उसका जब उसके दाने पक जाते हैं पीले, तो उससे तेल निकलता है।
2: तो वो तेल प्रयोग करने से यानी कि वो अच्छा होता है?
3: हाँ जी, सर्दियों में हल्का गर्म सरसों का तेल और गर्मियों में ठंडा सरसों का तेल 3 बूंद दोनों कान में कभी कभी डालते रहे, इससे कान स्वस्थ रहेंगे।
2: कानों को स्वस्थ रखने के लिए और सरसों का तेल प्रयोग किया जाए। शांता जी, सूरीनामों में हम लोग कौन सा तेल डालते थे? नारियल का तेल ना?
4: नारियल का तेल, घर के निकारल नारियल,
2: निकारे हुए नारियल का तेल छोड़ा जाता था कानों में,
4: कानों में सर पे लगाया जाता था और देह में मालिश भी किया जाता था।
2: कभी कभी तो हम लोग अपने लगा करके नारियल के तेल जाते थे स्कूल पे, तो वहाँ गर्मी में तो तेल चुईने लगता था,
4: पिघल जाते थे।
3: हमारी मम्मी तो हमारे सिर पे सरसों का तेल ही लगाती थी
2: वहाँ भारत में।
3: हाँ जी, और उससे खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनता है।
2: स्वादिष्ट?
3: हाँ जी, और अचार डालना हो उसमें भी सरसों का तेल ही डालते हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ जी, अचार में।
2: तो ये तो कुछ कह रहा कि कभी बनाकर खिला दो तो हमें पता चलेगा कि सरसों का तेल का स्वाद कैसा है, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
4: हाँ बिल्कुल,
3: हाँ अगर आप चाहें तो जरूर सरसों के तेल में भोजन बन जाएगा।
4: भारत में हमने देखी वहाँ सभी खास तौर पे सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, हाँ, ज़्यादा तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे।
3: सही कहा। हाँ, शांता जी।
2: हाँ सही, वो हमने भी देखे हैं कि यानी कि सोनब ब्लूम ऑयल के कुछ और कहते हैं वहाँ ना,
3: सनफ्लावर
2: किसी और तरीका से कह रहे थे,
4: रिफाइन।
2: हाँ, और ये सरसों वाला को रिफाइन नहीं कहते?
3: नहीं, इसको सरसों का तेल ही कहते हैं।
2: अच्छा, तो इसे अपने कानों में डाल सकते हैं कभी काल के, ताकि कानों में
4: दर्द ना रहे।
3: कच्ची धानी का तेल भी कहते हैं मेरे को लगता है शायद, सरसों के तेल को भारत में
2: कच्ची धानी का तेल
3: हम
2: ऐसे भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप भी सुन रहे हैं कि हम सब यहाँ काफी संदेश तो है जरूर, और कौन सा संदेश है बबली जी?
4: नहीं, हम बता दे फिर से कि सर्दियों में हल्का गर्म
3: हाँ जी
4: सरसों तेल, और
3: गर्मियों में ठंडा सरसों का तेल।
4: हाँ,
3: मौसम के हिसाब से तो
4: हाँ, जब हाँ मौसम गर्म हो तो ठंडा तेल डालना
3: हाँ जी,
4: और जब गर्म हो नहीं ठंडा हो तो थोड़ा से हल्का गर्म कानों में डालना कभी कभी ना
3: हाँ जी,
4: कभी कभी
3: हाँ जी।
2: तो ये कानों का ठीक होता है
3: हाँ जी।
4: तो कान के साथ साथ मेरे साथ मेरे ख्याल से शरीर भी उसमें सभी कुछ हाँ,
3: मालिश भी कर सकते हैं। हमारे पापा सरसों के तेल की नहाने से पहले पूरे शरीर में सरसों की मालिश करते थे, फिर नहाने जाते थे।
4: तो सरसों के तेल लगाने से मेरे ख्याल से भी गर्म बदन को भी गर्म रखता है
2: ऐसा।
4: हाँ, हम इस्तेमाल करते हैं, हमने सुनी है, किसी ने कहा है, तो हमने जब घर से निकलती हूँ ना ये सर्दी के मौसम में, तो मैं अपने ये इसका कैसे कहते हैं घुटनों को मैं उसमें लगा लेती हूँ और पैर में भी लगा देती हूँ, तो सर्दी या ठंड कम लगती है।
3: अच्छा।
4: हाँ,
2: तो दोस्तों ये भी अपना और संदेश जो शांता जी भी इसे प्रयोग करते हुए और हम सबको और अपना संदेश को बांट रहे, तो हमें भी इस पे ध्यान देना चाहिए। पर शांता जी, ऐसा और कौन सा संदेश है उस पे ध्यान देना चाहिए बबली?
4: निद्रा, हमने ख्याल से निद्रा हाँ निद्रा यानी कि
3: नींद हाँ जी।
4: बबली जी,
3: दिन में जब भी विश्राम करें तो दाहिनी करवट लेकर सोएं और रात में बाईं करवट लेकर सोएं। दाहिनी करवट लेने से बायां स्वर अर्थात चंद्र नाड़ी चलेगी और बाईं करवट लेने से दाहिना स्वर अर्थात सूर्य स्वर चलेगा।
2: यानी कि इस प्रकार को सोना चाहिए,
4: दाहिने यानी कि रेखतर और बाएं लिंकर।
2: तो दोस्तों जैसे कि हाँ, लिंकर कांत और रेख्तर कांत पे लेटना चाहिए ताकि आपका शरीर जो है उसमें कोई प्रकार के, क्योंकि देखो यहाँ भी संदेश भेज दिया गया है कि शांता जी, क्योंकि मनुष्य के संपत्ति ना दौलत है ना उनका जायदाद होता है, उसके संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार, अच्छे स्वस्थ शुभचिंतक मित्र और स्वयं की संतुष्ट मन होता है। तो इस बातें पे हमें ध्यान देते हुए आगे का संदेश क्या है बबली जी?

0: आगे का संदेश है तांबे का पानी।
1: तांबे का पानी,
0: रात को तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह उठते बिना कुल्ला किए यानी बिना मुंह धोए निरंतर ऐसा करने से आप कई रोगों से बचे रहेंगे। तांबे के बर्तन में रखा पानी गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली माना गया है।
1: तो तांबा किसको कहते हैं शांता जी?
2: तांबा कहते हैं जो हम आजकल यहाँ पे दुकानों में देखते हैं ना, कोपर नहीं, कोपर को पीतल कहता है ना
1: जी,
2: कोपर
1: जी।
2: को पीतल कहते हैं और कोपर से अगर एक साथ में कभी देखना फर्क है, तांबा, तांबा एक लाल रंग के होता
0: सही
2: है।
0: सही बोला शांता जी,
2: लाल रंग का होता है और वो भी थोड़ा सख्त है मटेरियल में, वो थोड़ा सख्त है दान को ऊपर से, तो उसको तांबा कहते हैं।
0: हाँ,
2: और उसमें आपने कहा पानी ढरना रात में।
0: हाँ जी, रात को पानी रख के और सुबह उठते हुए कुल्ला किए बगैर उसे पीना चाहिए,
2: उसे पी लेना चाहिए।
0: हाँ जी,
1: पर तादाद कितना होना चाहिए, ढेड़ होना चाहिए या थोड़ा होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए?
0: ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही होना चाहिए,
1: क्योंकि दोस्तों तांबा एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा वस्तु है जिसमें आप जल धर देंगे, क्योंकि तांबा में आप दूध नहीं रख सकते हैं शांता जी मेरे ख्याल से।
2: मुझे नहीं पता क्यों,
1: क्योंकि ऐसा होता है कि मंदिरों में, हम सब मंदिरों में जाते हैं तो कभी पंचामृत तांबा के उसमें नहीं रखा जाता।
2: वो क्यों?
1: क्योंकि वो कहते कि वो
0: दूध को खराब कर देते,
1: दूध को खराब कर देते। और खास करके एक बात, मैं एक बार हरिद्वार में थे, तो हरिद्वार में वहाँ आप सस्ते में लगा रहा होगा कि लोटा बिकता है ना, कभी काल के हम लोग यहाँ से भी जाते तो सस्ता माल वहाँ खोजते हैं, तो हरिद्वार में आपको सबसे सस्ता सस्ता मिल जाएंगे। पर उसमें ये होता है कि वो कहेंगे, कहते हैं आप नहीं पूछेंगे कि तांबा का कलर रहता है, पर तांबा असलियत वाला नहीं होते, क्योंकि तांबा ऐसा मटेरियल है, ऐसा वस्तु है जिसे मखनीत नहीं घींच सकता
2: ना।
1: उसे जब मखनीत घींचे तो यान ले उसमें मेताल डीलर, मेताल डीलर नहीं होना चाहिए। तो मखनीत लगा करके आप देख सकते कि तांबा असली है या नहीं, क्योंकि जब तांबा असली होगा तो मखनीत उसे नहीं घींच पाएंगे।
2: अच्छा,
1: और तांबा का जैसे कि हमारे मिंत होते हैं ना
2: जी,
1: तो फाइव सन जो हमारा होता है ना वही कलर का
2: जी,
1: तो ऐसा ही देखना चाहिए कि तांबा उसी का रंग का होता है।
2: और जैसे मुझे भी पता है ये सोना भी ना, सोना में भी ये प्रयोग होता है,
1: तो उसे मिला देते हैं तब वो थोड़ा
2: पहने लायक हो जाता। हाँ, है सजाए लायक हो जाता है,
1: सजाने यानी कि सी रात बनाने लायक हो जाता है। तो दोस्तों हम सब जो आज के विषय, हम बबली जी विषय का नाम एक बार फिर आप बोल दो तो हम सब आगे बढ़ेंगे।
0: निरोगी काया घरेलू उपचार,
1: यानी कि अपने निरोगी काया के लिए घरेलू चीजों को प्रयोग करना। शांता जी ऐसा करते हैं कि एक गीत की ओर बढ़ते कि हम सब एक और सुना सकते हैं।
2: बढ़ सकते हैं, पर हमने अभी तक जितने कहा ये सब उपाय, ये सब घर में हमारे उपस्थित है, हमें अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा।
1: सही बात, सही बात। ये सब चीज़ें जो है जो हम अपने घर में, हमारे घर से रहते हैं और हम उसे प्रयोग करके उसे लाभदायक यानी कि उसे अपने शरीर के लिए, अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। दोस्तों हम एक सुंदर से गीत जो शांता जी तैयार करके रखे हुए उस ओर बढ़ेंगे।

0: संदेश की ओर बढ़ना है
1: तो मैं ये कहूंगी कि प्रभु को याद करो मन की कक्ष में, प्रभु को याद करो मन की कक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। हाँ सुनने वालों,
0: अच्छा संदेश सुनाइए आपने। बबली जी, आपका आगे का संदेश क्या है, क्योंकि शांता जी ने कह ही दिया है कि प्रभु का याद करना है
1: मन की कक्ष में,
0: मन के कक्ष में,
1: तो फिर फैसला होंगे आप ही के पक्ष में।
0: ये कहावत ही बड़ा सुंदर संदेश है जो आपने सुनाए, थोड़ा से इसे और निचोड़ दीजिए।
1: मन की कक्ष में, जिस ध्यान में धरो,
0: ध्यान धरो,
1: प्रभु को याद करो मन की कक्ष में, फिर प्रभु आपको जरूर सुनेंगे और फैसला ही करेंगे आप ही के पक्ष में।
0: और यह भी हम जानते कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और बबली जी, ये बताइए कि हमें तांबा के, जो आपने बता ही चुका है कि तांबा का वो नहीं जरूरत होना है कि एक लोटा होना है या थाली रख सकते हैं ना, कोई भी चीज में रख के।
2: हाँ जी, किसी भी चीज में पानी
0: तांबा का रहे।
2: हाँ, बस तांबे का हो।
0: तो आगे का संदेश क्या है?
2: आगे का संदेश है सौंठ।
0: सौंठ, ये जो हम पहनते हैं?
1: नहीं, ये लो कर लो बात, वो सौंठ नहीं। हमारे सुनने वालों, सरनाम के सुनने वालों, ये तुरंत जान गए होंगे कौन से सौंठ हम कहते हैं।
0: शांता जी, बस रेडियो बनाना है तो मैं कुछ ना कुछ छोड़ ही देता हूँ।
1: हाँ, सौंठ कहते हैं खद्रोख द द्रोख खैम्बर,
0: खैम्बर।
2: हाँ जी, हाँ। शांता जी,
0: तो ये खैम्बर को कहते हैं सौंठ। ये तो हम लोग छोटैया पे भी प्रयोग किया करते थे ना शांता जी?
1: हाँ, जब हम लोग,
0: कब प्रयोग होता था ये तो भूल गया
1: मैं। मम्मा लोग जब बनाते थे कैसे कहते, बीस मेलक को
0: फेनूस
1: जो बनता था,
0: डाला जाता था सौंठ।
1: हाँ,
0: और उसे तभी प्रयोग किया जाता था। और भी कुछ कार्य में प्रयोग होता था?
1: वैसे मेरे को पता नहीं है। वैसे
0: नहीं, मैं तो
1: चाय उसको तो हमने यहाँ पर सीखी,
0: चाय इलायची आदि तो हम सब जरूर
1: यहाँ पर सीखी, पर ये सौंठ तो हम सीखी वहाँ पे बीस मेलक में, यानी कि फेनूस में। जी
0: तो,
1: और आप बबली जी,
2: हमारे जैसे बुखार हुआ, जुखाम हुआ या कफ से बचने के लिए आधा चम्मच सौंठ और जरा सा गुड़ एक गिलास पानी में मिलाइए और उसे उबालने के लिए रख दिए, और तब तक उबालिए जब तक वो आधा ना रह जाए।
1: अच्छा,
2: और रात को सोने से पहले यह पानी पिए।
0: तो ये गुड़ तो मीठा कर देंगे ना?
2: हाँ, तो सौंठ थोड़ी कड़वी होती तो।
0: अच्छा।
2: हाँ, तो बदलते मौसम में जैसे सर्दी है, बारिश है
1: जी,
2: तो इसका सेवन करने से रोगों से बचा जा सकता है।
1: बात तो सही है।
0: तो ये ज्यादा तादाद में ठंडी में प्रयुक्त?
2: हाँ जी, ऐसे मौसम में प्रयोग कर सकते हैं,
1: तो इम्यूनिटी जो है दही के वो भी बढ़ते हैं।
0: हाँ, तो आगे का कार्यक्रम में
1: ये झूर वाला जो है ना, जो हमने कहा सौंठ, तो हाँ, खैम्बर जो झूर वाला उसका सौंठ कहते हैं।
2: हाँ जी शांता जी,
1: और जो कच्चा है उसे खैम्बर यानी कि अदरक कहते हैं।
2: हाँ जी, सही बात बोला आपने।
1: हाँ, जो कच्चा है, जो झूर नहीं है, तो इसमें फर्क है। जो कच्चा है उसको अदरक यानी कि खैम्बर हम यहाँ कहते हैं, और जो झूर वाला है जो अलग से है, ऐसे पाकी में आओ तो उसे सौंठ कहते हैं।
2: क्योंकि अदरक ताज़ा होता है और सौंठ थोड़ी सुखा के रखते हैं तो वो थोड़ी द्रोह हो जाती है, तो सूखी
1: जी। हाँ, जैसे कहते हैं हल्दी भी कच्चे वाला होता है और सूखा वाला भी होता है।
2: हाँ
1: हाँ,
2: सही बोला आपने,
1: हमने बाजार में देखी कच्चा हल्दी।
0: चलो तो आगे का कार्यक्रम, पहले हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे शांता जी, और फिर आगे का कार्यक्रम बनाया जाएगा।

0: सुंदर गीत को हम सब सुने। और दोस्तों, यहाँ से हम जो कार्यक्रम चल रहा है, टेलीफोन भी आते रहते हैं और हम सब कुछ ना कुछ संदेश कोशिश करते हैं टेलीफोन जो आते हैं तो आपके साथ में जोड़ने के लिए। पर बबली जी, अगला संदेश क्या है?
1: अगला संदेश है टाइफाइड। टाइफाइड एक बुखार का नाम है।
0: बुखार का नाम?
1: हाँ जी। चुटकी भर दाल चीनी की फांकी, चाहे अकेले ही चाहे शहद के साथ, दिन में दो बार लेने से टाइफाइड बुखार नहीं होता।
0: ऐसा?
1: हाँ जी।
0: तो टाइफाइड और एक बुखार होता है। शांता जी, आप इसके बारे में कभी सुने थे?
2: मैं तो यहाँ पे मेरी को आज भी हमारे सुनने वालों के साथ साथ मेरे को यहाँ पे बहुत सी जानकारी आज भी मिल रहे हैं।
0: तो टाइफाइड और इससे कैसे बच सकते हैं बबली जी?
1: दालचीनी की फांकी। दालचीनी एक भोजन मसाला है जिसको भोजन में भी प्रयोग किया जाता है, उसको दालचीनी कहते हैं।
2: दालचीनी कार्डमोन कनेल को कहते हैं दालचीनी, पर यह चालचीनी वो पुदर फॉर्म में भी होता है और स्टॉक में भी होता है।
1: हाँ जी, हाँ जी, सही बताया आपने। उसको चाहे वैसे ही उसको मुंह में डाल लें, चबा सकते हैं, या अगर उसके पाउडर बना के और शहद के साथ दिन में दो बार लेने से टाइफाइड बुखार नहीं होता।
2: मैंग सलमा का फन कनेल एंड होनिंग ओके मिलाकर तो उसको भी आप प्रयोग कर सके हैं दिन में दो बार।
1: हाँ, दिन में दो बार।
2: हाँ, तो उस अच्छा, हाँ, ये तो भी बहुत अच्छा है टाइफाइड।
0: तो टाइफाइड के बारे में हम सब सुने दोस्तों। तो हम आगे का कार्यक्रम, बबली जी और कौन सा संदेश है?
2: आगे बढ़ने से पहले अभी एक व्यक्ति ने जो हमारा प्रोग्राम भी जो इतना दिल लगाकर भी सुनता है, हालांकि हल्दी में वो अपना नाम भी नहीं बता पाए तो हम उनका नाम यह नहीं बता पाऊंगी, नहीं ले पाऊंगी, फिर भी हम उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि यहाँ प्रोग्राम बनाते सजाते में तो इतना देर याद करना पड़ता है। तो ये शख्स, ये सुनने वाला भी हमारा साथ जोर तोर से याद की और तुरंत फ़ोन लगाई और कहा कि सोंठ जाने की, सोंठ हम अभी बात की, उसको भी जब हमारे घर जो बच्चे हुआ आते हैं तो उसको बनाते हैं वो माँ के देने के लिए, माँ को खाने के लिए, और वो है सठौड़ा।
0: सठौड़ा, सही बात।
2: सठौड़ा बनाते हैं, उसमें डाला जाता है सोंठ और फिर जो गोल गोल बड़ा बड़ा बड़ा लड्डू घीत बनता है, ढोड़ी जिसके कहते हैं,
0: ढोड़ी,
2: हाँ, उसमें भी डाला जाता है ये सोंठ। और ख़ास तौर पर ये एक मिठाई भी जो बनते हैं गोजिया,
0: गोजिया में भी डालते हैं।
2: गोजिया में भी डाला जाता है सोंठ।
0: चलो शांता जी, तो ये भी कभी हम लोग का मिलेगा खाने का, कैसे उसमें? और
2: जलेबी, जलेबी नहीं, गोजिया जरूर बनाना क्योंकि आजकल गोजिया और उसको क्या कहते हैं भाजी वाला, सहना,
0: सहना,
2: सहना कम लोग बनाते हैं।
0: और कौन सा संदेश है? क्योंकि घड़ी का रफ्तार भी रुकता नहीं है।
1: हाँ जी,

0: ध्यान, हमें रोज 15-20 मिनट ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन।
1: मेडिटेशन
2: करना चाहिए।
0: हाँ जी,
1: अब मेडिटेशन आप जहाँ भी हो वहीं कर सकता है, अगर आप बस में हो या ट्रेन में हो या ट्रेन में हो तो ये भी हो सकता है।
0: हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता शांता जी।
1: हाँ, तो इसलिए ऐसे नहीं कि घर ही पे होना चाहिए।
0: नहीं, जरूरी नहीं घर पर ही है, जहाँ भी है, जहाँ आपको समय मिले।
1: हाँ,
0: वहीं पर,
1: अगर आप पार्क में हो या बस में हो या ट्रेन में हो, अगर आप भी में ही रहे करत हो ये कोई के संगे गाड़ी में, तो ड्राइवर के बगले में हो या पाछे में, आप ही मेडिटेशन कर सकते हो।
0: हाँ जी,

0: शांता जी, मेरा गुरु जी योगा टीचर ने कहा था कि बोले हमारा शरीर जो मिला है तो 24 घंटा में, 24 घंटा को और ये शरीर को जब निरोगी रखने के लिए अगर आप चाहे तो कम से कम 24 घंटा में से 15-20 मिनट, ये कम से कम है, उसे और योग में करना चाहिए, ध्यान में करना चाहिए। तो बबली जी ने भी ये संदेश आज हम सबको सुनाए, पर आगे का और संदेश क्या है बबली जी?
1: हाँ जी, आगे का संदेश है नाक। रात को सोते समय नित्य रोज यानी सरसों का तेल नाक में लगाएं। हर तीसरे दिन 2 कली लहसुन रात को भोजन के साथ लें। सुबह 10 तुलसी के पत्ते और 5 काली मिर्च रोज चबाएं। सर्दी बुखार और सांस का रोग नहीं होगा और नाक स्वस्थ रहेगी।
2: अच्छा, देख यहाँ पर फिर सरसों का तेल एक बार फिर से यहाँ पे सुनने को मिला है, यानी कि सरसों का तेल इसको नाक में लगाना चाहिए।
1: हाँ जी,
0: ऐसा। तो दोस्तों, इन बातों को ये संदेश तो हमने भी शांता जी पहला बार सुना हूँ, और जरूर इसे कभी काल के अब नहीं प्रयोग करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कैसे हम सब ये जो हर बार हरफ्स आ जाता है तो खरीप आदि आता है।
1: हाँ जी जरूर,
0: तो उससे कैसे हम बच सकते हैं। बबली जी, इसे एक बार और आप दोहरा दीजिए।
1: हाँ जी, नाक में
0: जी।
1: हाँ जी, नाक। रात को सोते समय नित्य सरसों का तेल नाक में लगाएं। हर तीसरे दिन 2 कली लहसुन, हर रोज नहीं, तीसरे दिन।
2: हाँ, नादरी दाख।
0: पर आपने कहा 2 कली लहसुन, उस वो क्या है?
2: तो ये तेंचस
1: दो। हाँ जी,
2: तो ये तेंचस क्नोफ्लोक।
1: रात को भोजन के साथ ले।
0: हाँ,
2: कच्चे ऐसे।
1: हाँ
2: ही
1: हाँ,
2: भोजन के
1: हाँ
2: साथ
1: जी, कच्चा। अच्छा। और 10 तुलसी के पत्ते और 5 काली मिर्च रोज चबाएं। सर्दी बुखार और सांस के रोग नहीं होंगे और आपकी नाक स्वस्थ रहेगी।
2: ऐसा।
1: हाँ जी,
2: काली मिर्च यानी स्वार्थ पेपर।
1: हाँ जी,
2: स्वार्थ पेपर के साथ 10 तुलसी दल, तुलसी पत्ता,
1: पत्ते। हाँ,
2: तुलसी पत्ता चबा चबा।
1: हाँ,
2: कर
1: चबाने, चबाने
2: चबाने के मतलब है कौव।
1: हाँ जी, कौव करना,
2: कौव करना है। हाँ, ऐसे हम भी नए नए शब्द यहाँ पे हमको भी मिलते हैं सुनने के लिए, चबाने के लिए। हाँ, हमारे सुरीनाम में भी सब कहते हैं क्या चबा रहे हो। तो ये चबाने की कोई गलत बात नहीं, एक अच्छा शब्द है। हाँ, हम यहाँ डच में कहते हैं कौवन। हाँ, सुनने वालों, आप सुन रहे हैं, जैसे आपको पता है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम।

0: शांता जी और संदेश क्या है बबली जी इसमें सुनाने वाले हम सबको?
1: अगला संदेश है मालिश।
2: मालिश मसाज।
1: हाँ जी मसाज। नहाने जाने से आधा घंटा पहले सर के ऊपरी हिस्से में सरसों के तेल से मालिश करें।
2: देखो सरसों का तेल एक बार फिर यहाँ आए, तीसरा बार हमने सुना है, कितना अच्छा है सरसों का तेल प्रयोग करने के लिए।
1: सही बात शांता जी, भारत में सबसे ज्यादा सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं,
2: इसलिए वहाँ के सब भारतीय लोग ऐसे चमकते हैं सरसों के तेल की तरह।
1: और सरसों के तेल से मालिश करने से सर हल्का रहेगा और दिमाग तेज रहेगा।
0: शांता जी सरसों के तेल हॉलैंड में मिलता है?
2: हाँ हाँ, मस्टर्ड ऑयल।
0: मस्टर्ड ऑयल उसे कहते हैं?
2: हाँ मस्टर्ड ऑयल यह मिलता है।
0: अच्छा।
2: हाँ।
1: और रात को सोने से पहले पैर के तलवे, नाभि और कान के पीछे और गर्दन पर सरसों के तेल की मालिश करके सोएं।
2: रात को सोने से पहले तलवे, तलवे यानी के फुट सोल पे,
1: बीच का हिस्सा पैर का। हाँ जी तलवे,
2: तलवे
1: और नाभि,
2: नाभि यानी कि नाफल।
1: हाँ जी नाफल। और कान के पीछे का हिस्सा।
2: हाँ कान।
1: हाँ जी। और गर्दन पर सरसों के तेल की मालिश करके सोएं।
2: हाँ गर्दन। अच्छा।
1: और इससे नींद अच्छी आएगी।
2: हम आज रात के ट्राई करेंगे।
1: और इससे मानसिक तनाव, जो दिन में आपके दिमाग में इतना तनाव है,
2: हाँ हाँ,
1: वो दूर भागेगा।
2: अच्छा तो इसे जरूर प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में सरसों का तेल नहीं है सुनने वालों, तो आप जरूर से इसे खरीदे। ये छोटा पिंक में भी मिलता है और थोड़ा से बड़ा बोतल में भी मिलता है। आप जो चाहे आप जो इसे जरूर खरीद कर इसे प्रयोग करें।
1: हाँ जी। और मालिश करने से आपकी त्वचा मुलायम रहेगी, सॉफ्ट।
2: वाकई में जैसे हमने कहा ना, हम ये सर्दी के मौसम में हम अपने पैर में लगाते हैं।
1: हाँ जी।
2: तो पैर भी वाकई में बेबी फुट घत हो जाते हैं, मुलायम होता है और पैर का रंग जो है उसका निखार आता है।
1: हाँ जी।
2: तो जैसे आपने कहा नाक में लगाना, कान के जड़ में लगाना, नेक में लगाना,
1: नाभि में।
2: हाँ, नाभि पे।
1: और सप्ताह में एक दिन पूरे शरीर की मालिश जरूर करें, हफ्ते में एक बार।
2: अच्छा ये भी।
1: हाँ जी।
0: यानी कि हमें अपना जो पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है इसमें और खूब अपना उसे सेवन करने के अवसर घरेलू सामानों से कैसे क्या कर सकते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ने वाले हैं एक सुंदर गीत की ओर, पर सुंदर गीत को और बढ़ने से पहले कुछ और सुना सकता हूँ शांता जी या ना?
2: एकदम चले।
0: चला दूं?
2: चला दो।
0: दोस्तों यहाँ है ये संदेश की हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर आगे कार्यक्रम में और भी काफी संदेश है।

0: हाँ जी, ओम शांति ओम। आपको सुनाया गया है यहाँ फाउ हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से इस प्रोग्राम जो आप तक पहुँचाया जाता है, जिसका नाम है ज्योति का प्रकाश। सुनने वालों, तो यहाँ से आपके समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे बबली जी क्या फरमाएगी?
1: हाँ जी, आगे का विषय योग और प्राणायाम।
0: जी, योग और प्राणायाम।
1: हाँ जी, नित्य कम से कम आधा घंटा योग और प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें,
0: तो इससे ऊर्जा बढ़ेगा।
1: हाँ जी, योग करने से तो आपको पता है शांता जी,
0: जी
1: योग तो अच्छा होता है, तो योग करना चाहिए।
0: हाँ, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और प्राणायाम भी।
1: हाँ जी,
0: प्राणायाम यानी कि आदम हालिंग।
1: हाँ जी,
0: प्राणायाम आदम हालिंग। तो योग तो हम तो अगर कोई भाग दौड़ के जिंदगी जो जीते हैं, तो उसको कम से कम थोड़ा समय निकाल के आधा घंटा ये भी करे तो उसके लिए भी बहुत फायदा होगा, और साथ ही साथ में प्राणायाम करे यानी कि आदम हालिंग।
1: हाँ जी,
0: हाँ वाकई में तो इसमें एनर्जी होगी और भी तंदुरुस्त रहेगा शरीर भी, शरीर के साथ मानसिक भी तनाव भी दूर होगा।
1: हाँ, तो दोनों चीजें इकट्ठी मिल जाएंगी। तो
0: जी, और आगे हम सुने,
1: आगे है हरड़।
0: हर, अच्छा वो क्या होता है?
1: ये भी एक तरह का मसाला है शांता जी, जो भोजन में प्रयोग किया जाता है।
0: हरड़।
1: हाँ जी, हर रोज एक छोटी हरड़ भोजन के बाद दांतों तले रखें और इसका रस धीरे धीरे पेट में जाने दें। जब काफ़ी देर बाद यह हरड़ बिल्कुल नरम पड़ जाए
0: जी,
1: तो चबा चबा कर निगल लें। इससे आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे।
0: अच्छा?
1: और दांत 100 वर्ष तक निरोगी रहेंगे और पेट के रोग नहीं होंगे।
0: तो इससे हमको ज़रूर खोजना चाहिए ये क्या होता है, हम तो नहीं जानते हैं। फिर भी
1: आपने जैसे नीम की दातुन देखी है तो,
0: जी,
1: तो ये भी दातुन की तरह मोटी होती है।
2: दातुन क्या चीज़ है?
1: नीम तो देखा है, नीम का पेड़।
2: नीम का पेड़ तो हमारे घर से है।
0: दातुन वो होता है, पहले हम सूरीनाम में भी उससे प्रयोग किए, आजकल हम कहते हैं तांद बोर्स्टल दातुई था, उसे एक पीस ऐसे स्टोकिया ना, चाहे हैनिंग के था या कुछ भी, आज तो हैगा सुथाउथ के भी बनाते हैं, तो उसको जो टॉप है उसका ना, उस पे कूच कूच कर आप उसको नरम करे तो उससे आप अपना दांत सफा कर सकते हैं।
1: सही बात शांता जी,
0: एकदम बायोलॉजिस्ट
2: शांता जी। अब इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा।
0: जरूर
2: कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आपने कह दिया कि उसे लकड़ी को यानी कि स्टेंगल है ना
0: जी,
2: और मुंह में धल करके कूचने पड़ता है।
0: हाँ, उसको नरम करता है, दतुई हो जाता है, उससे अपना दांत बना एकदम बायोलॉजिस्ट।
2: मैं अगर आपसे कहूँ, जितना शादी लिफोर्नो से लाइडिंग जाता था ना बारात,
0: अच्छा,
2: तो हम लोग रात भर और काफी जगह तो ये होता था, नाटक देखते थे और रात के बीत जाता था, सुबह में सब कोई दतून करते थे और टिकिया लेकर मुंह में
0: ऐसा। हाँ, हाँ, तो वो पहले हमने देखी, वैसे हम मुझे पता नहीं था, पर मेरे बाबूजी ने ऐसे सिखाई हमको, तो ये इस तरह से मुझे याद है। और भारत में ऐसे हमने देखे, जब वहाँ पे हॉलीडे से जाती हूँ तो हम वहाँ पे काफी देखते हैं ये।
1: हाँ, मेरे पापा भी नीम की दातुन रोज करते थे
0: जी,
1: और उन्हें हम ऐसे चबा चबा के करनी।
0: और दांत साफ करने के लिए, सफेद रखने के लिए कोयला भी इस्तेमाल करते थे।
1: हाँ, पहले
0: कोयला,
1: बिल्कुल सही बोला आपने, कोयला भी। हाँ,
0: कोयला ना जोन है गा, या बारबेक्यू कोयला नहीं, बारबेक्यू कोल नहीं, उसमें क्योंकि उसमें तेल मिलाया जाता है ना, जो
1: असली कोयला
0: है,
1: जो उससे दांत साफ करते हैं।
0: अच्छा। उससे दांत साफ करता है,
1: उसे मंजन कहते हैं हिंदी में।
0: हाँ, उसे सफेद हो जाए,
1: कोयले का मंजन। हाँ जी,
2: तो ये बात तो हड़ा, ये इस पे तो थोड़ा से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो गया कि थोड़ा देरी से ये बात को पता चला, क्योंकि अब बालों तो सफ़ेद होने लगा। हमारे भाई रोटरडाम में जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्होंने तो सब मोको के काम किया, अपने आप को और बचाए, और यानी कि सब प्रकार से जितना बातें हम सब आज किए हैं सब पता था उन्हें, और अभी फ़ोन करके हमसे कह रहे थे। पर अब ये बात है कि हड़ा, ठीक कह रहा हूँ ना?
1: नहीं, हरड़।
2: हड़ा,
1: हाँ जी,
2: तो ये हौलाद में मिलता है, क्योंकि अब तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा सफ़ेदी बाल आने लगा है शांता जी, पर जो कुछ से बच सके तो क्यों ना हम उसे प्रयोग करें।
1: हाँ जी जरूर मिलता है, इंडियन दुकान में जाइए या पाकिस्तानी दुकान में आपको जरूर मिलेगा।
2: तो हम सबको ये मिल सकेगा और ये हमारे बालों को सुरक्षित रखेंगे।
1: हाँ जी, बाल कभी सफेद नहीं होंगे और दांत 100 वर्ष तक निरोगी, कोई रोग नहीं लगेगा दांतों में।
2: 100 वर्ष तक निरोगी।
1: हाँ जी,
2: तो अपने दांतों के भी हम सब इसी प्रकार से और सुरक्षित रख सकेंगे।
1: हाँ जी
2: बबली जी, आगे जोरी जोर से और हम लोग का जो रफ्तार चल रहा है तो आप अपना संदेश सुनाइए।
1: आगे का संदेश है सुबह की सैर। सुबह सूरज निकलने से पहले पार्क या हरियाली वाली जगह पर सैर करना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय हवा में प्राणवायु का यानी ऑक्सीजन का बहुत संचार रहता है कि अधिक मात्रा में होती है ऑक्सीजन, जिसके सेवन से हमारा पूरा शरीर रोग मुक्त रहता है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है।
0: ये बात तो सही है, सुबह के टाइम में तो ढेर सुरक्षित रहे।
1: हाँ जी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी
0: जी,
1: और इससे जो हमारे रोग शरीर में बाधा डालती हैं चीज़ें तो उसका रुकावट वो रुक जाएंगी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से।
0: हाँ, दो फेल सुरक्षित इन ये लेखाम तक रहेगा, चलने से वो सब सुरक्षित आ जाता है।
1: सही कहा शांता जी, और जैसे घी खाएं मांस बढ़े, अलसी खाएं खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सबकी हेंकड़ी।
0: ये
1: कि घी खाने से शांता जी,
0: हाँ जी,
1: मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो
0: जी,
1: और जो अलसी है वो भी एक तरह की तिलहन, तीसी कहते हैं उसको
0: जी,
1: और उसको खाने से दिमाग बढ़ेगा।
0: ये तो बहुत अच्छा है।
1: हाँ जी, और दूसरा है तेल तड़का छोड़कर नित घूमन को जाएं, मधुमेह का नाश हो जो जन अलसी खाए, कि रोज जैसे छौंका
0: जी
1: दाल नहीं खानी चाहिए, और रोज घूमने के लिए जाएं
0: जी,
1: और इससे मधुमेह यानी साइकर की बीमारी नहीं होगी।
0: अच्छा, हाँ, मधु की बीमारी नहीं होगा।
1: हाँ जी,
0: हाँ, ये शब्द हमारे कान पे पहले सुनने को नहीं मिलता, मगर मधु कहते हैं मीठा के, तो मीठा यानी साइकर सिक्त।
1: हाँ जी,
2: तो शांता जी हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं?
0: ये हम आप लगा दो तो हम यहाँ साथ में सुन लेंगे, क्योंकि वक्त भी हो चल

हाँ सुनने वालों, जाने पहचाने गीत है जो यहाँ पे आप तक पहुँचाया जाता है। जाने का इसका मतलब हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे समाप्त होने को आ गई है। और कहती हूँ, होना एक दिन सबका हिसाब है, होना एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। सुनने वालों, साथ देने और सुनने के लिए आपको बहुत से धन्यवाद कहती हूँ। और यहाँ से स्वीकार कीजिए शांता की प्यार भरी राम राम।

इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। मेरी ओर से भी सबको सुनने वालों को नमस्कार।

दोस्तों सुनने वालों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीने ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। हम सब यहाँ कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो यहाँ समाप्ति पे आ चुके हैं, आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश जरूर आपके पास पहुँचे होंगे और जरूर इसमें से कोई ना कोई प्रकार से आप इसे अपना लाभ इसे निकालेंगे। हमारे साथ सहयोग देने वाले शांता खेमई जी, बबली आसरा जी और मैं हूँ सेवक संजय, आपके साथ जो कार्यक्रम में सहयोग दिए, सभी सुनने वालों को हार्दिक से नमस्कार। फिर मिलेंगे।

जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आते हैं वक्त नहीं। आपको बड़े प्यार से हम यहाँ से आपको स्वागत कर रही हूँ सुनने वालों। और यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे मेहंदी हसन के खूबसूरत आवाज़ में एक सुंदर सा गीत, यहाँ से आपके लिए पेश करेंगे।

या तू जो कहे, मेहंदी हसन के आवाज़ में हम सभी ने सुने। तो किसी ने क्या खूब कहा है सुनने वालों की, जो जो क्लॉप होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि फॉलख योर हार्ट वन दी क्लॉप या

सुनने वालों, मोहब्बत तो ज़िंदगी है, मोहब्बत से आप और हम, मोहब्बत से ये जहान है। तो और कह रहा कि लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है और प्यार की ज़रूरत दिल में होती है।

हाँ जी, हमने सुने। आप सोचते होंगे कौन ये गीत गाई है, तो हम आपसे बता दें, नूरजहां। जी हाँ, नूरजहां के आवाज़ में हम यहाँ से सुन रहे हैं ये सुंदर सुंदर सा गीत।

किस नाम से तुझे पुकारूं और क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी बता दे तो, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ऐसे ही वो शोले में बसंती से पूछ रहे थे।

कारोवां जो हमने सुने और ये भी एक बार जो हमको फिर से सुनाई और वो भी है नूरजहान की आवाज़ में।

इस सुंदर गीत जो हमने सुने और सुनाए हमको महेंद्र कपूर जी, सुरेश वर्तकर, उषा खन्ना, सुंदर सा गीत जा देखा तेरा वादा। जीवन एक यात्रा है, जी हाँ जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी। जीवन रोकर जिएंगे तो बहुत लंबी लगेगी, और हंस कर जिएंगे तो कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा।

आया या करो मैं क्या सुकु सुकु हमने सुने फिल्म जंगली से जो फिल्म जंगली से जो ये सुंदर सा गीत निकाला गया है और हमारा मरहूम मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में हम सब मिलकर सुने।

0: म्यूजिक।
1: जिंदगी वाकई में इम्तिहान ले लेती है सुनने वालों। जीवन से सबसे बड़ा, जीवन में सबसे महंगी चीज क्या है? हाँ सुनने वालों, जीवन में सबसे महंगी चीज क्या है? आपका वर्तमान, हमारा और आपका वर्तमान। वर्तमान जाने की इस पल ऑब्जेक्ट मोमेंट नहीं, ये हमारा सबसे महंगी चीज है वर्तमान। आज इस पल, इस वक्त, जो एक बार चला गया ना, तो फिर पूरी दुनिया के संपत्ति से भी हम उसे वापस, हम उसे खरीद कर नहीं ला सकते। और समय के बाद सुनने वालों, घड़ी, हम यही दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु से, परमात्मा से कि हे कान्हा, मेरी एक ही प्रार्थना है कि महंगी घड़ी सबको देना। हाँ सुनने वालों, कि महंगी घड़ी सबको देना, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को ना देना। हाँ, इसमें भी एक अंतर है कि महंगी घड़ी पहनने से तो वक्त तो चलेगा, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना मिले।

उनसे प्यार हुआ है अलका याग्निक औरो। उदित नारायण जी की आवाज में हम मिलकर सुने सुने वालों की तुमसे बस प्यार हुआ है।

सब मिलकर सुने आशा भोसले जी की आवाज में फिल्म का नाम ताल, इसमें संगीत दी है आर डे बर्मन साहब जी ने।

गोरिया चुराना ये दिल, जो हम सपने सुने सुने वालों, और ये सुंदर सा गीत निकाला गया है कुली नंबर वन से। और हम देखें तो इसमें जो अपना गीत का आवाज जो गाए है अभिजीत और चंदना दीक्षित जी ने,

और यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे कि इश्क बिना, हाँ जी इश्क बिना सुनेंगे हम, फिल्म ताल से निकाला गया है सुंदर सा गीत।

आर रहमान के साज और संगीत में जो सुनने वालों हमने सुने ये सुंदर सा गीत उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ में

क्या है और आर्ट ऑफ लाइफ क्या, पार्थ और अर्थ। जिंदगी में मुश्किलों का आना, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। खुश रहने के मूल मंत्र सुनिए जी, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए, जो पछता नहीं वो खाना नहीं चाहिए, जो सुनता नहीं उसे समझाना भी नहीं चाहिए, जो सत्य पर भी रूठे, जो सत्य बोलने पर भी रूठे तो उसे मनाना नहीं चाहिए, जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं चाहिए, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसको भी बनाना नहीं चाहिए।

Tragedy of Life फिल्म सूर से निकाला गया है। महालक्ष्मी आयर से सुने वाला हमने सुने कि कभी शाम ढले तो दिल में आ जाना। जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा, जो बदल जाए वो प्यार कैसा, और जो छोड़ जाए वो साथ कैसा।

खामोशी बहुत कुछ कहती है, खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगा कर नहीं दिल लगा कर सुनो। आईना के सामने खड़े होकर, आईना के सामने खड़े होकर खुद से माफ़ी मांगे, आईना के सामने खड़े होकर खुद से ही माफ़ी मांगे, सबसे ज़्यादा अपने ही दिल, सबसे ज़्यादा अपने ही दिल को दुखाया है औरों को खुश करते कर से। ठोकर नहीं खाएंगे जनाब तो कैसे जानोगे कि आप पत्थर के हो या शीशे का। जो बीत गया उसे जाने दो, जो बीत गया उसे जाने दो, आने वाला है, आने वाला है सुनहरा कल, बस उसे आने दो।

आप सुन रहे हैं फ़ानिस्तानी रेडियो और यहाँ से हम सुनेंगे मिलकर फिल्म वीर जरा से निकाला गया ये सुंदर सा गीत कि मैं यहाँ हूँ।

खैर ज़रा से जो सुंदर सा गीत निकला गया कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, अब दे से मोय फ्रूख मेदा कानी अब्सोल्यूट सेखन एक दो हेत लेकर उप मेघ माख एंड दैट माख एंड तेंस लोते इट इज़ योर दाग।

फिल्म ताल के टाइटल सॉन्ग हमने सुने अलका याग्निक उदित नारायण जी की आवाज में। सो बी हैप्पी दैट्स व्हेन अदर लुक एट यू, बी हैप्पी व्हेन दैट अदर लुक एट यू, दे कम आल्सो हैप्पी टू।

चाहे हो तो जीना, तो जीने की हुनर रखना हमें ज़रूर चाहिए। कि ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना।

की आवाज में हम सब मिलकर सुने सुने वालों, और फिल्म का नाम है जन्नत। फिल्म जन्नत से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है। और ओ, कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा ही नाम आता है। कैसे छुपाऊं अपने दिल की बात को, कैसे छुपाऊं अपने दिल की बात को, तेरी तो हर बात पर मुझे तो प्यार आता है।

यहाँ से एक बार फिर हमने साथ में मिलकर सुने के आवाज में फिल्म का नाम भूल भुलैया, भूल भुलैया से जो हमने यहाँ साथ मिलकर सुने। तमन्ना है मेरी मन की, तमन्ना है मेरी मन की कि हर पल साथ तुम्हारा हो। जितने भी सांस चले मेरी जान, जितने भी सांस चले मेरी, हर सांस पर नाम तुम्हारा हो। दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दिल से निभाएंगे जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है मेरी जान, तुमको ही चाहेंगे।

इस बार हमने सुने अरिजीत सिंह जी के आवाज में जालिमा। दिल कहता है चुरा लूं तुझे तकदीर से, दिल कहता है कि चुरा लूं तुझे तकदीर से, क्योंकि दिल नहीं भरता है तेरी तस्वीर से। मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, फिर भी वो रंगीन है। प्यार का कोई चेहरा नहीं होता, प्यार का कोई चेहरा नहीं होता, फिर भी वो हसीन है।

और हम साथ में मिलकर सुने को सोनू निगम और श्रिया घोषाल के साथ में कि मैं अगर कह दूँ

0: आँखों में तुम हो, हमारी आँखों में तुम हो, दिल में तुम्हारी तस्वीर है। तुम्हारे लिए दिल तो क्या, तुम्हारे लिए दिल तो क्या, जान भी हाजिर है। कितना प्यार करते हैं हम तुम्हें, कितना प्यार करते हैं हम तुमसे, ये कहाँ नहीं जाता, ये कहाँ नहीं जाता। बस इतना जानते हैं मेरी जान, बस इतना जानते हैं मेरी जान कि तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता।
1: लत मोहे ऐसी लागी

मेरी दीवानी, हम सब मिलकर सुने कैलाश खैर के आवाज में। तुम पूछ लेना सुबह से, तुम पूछ लेना सुबह से, यकीन ना हो तो पूछ लेना शाम से। ये मेरा दिल धड़कता है, ये मेरा दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे नाम से।

इस बार हम साथ में मिलकर सुने अलका याग्निक जी से और कुमार शानू जो साथ में मिलकर हमको ये सुंदर सा गीत सुनाए। हमारी गलतियों से कभी टूट न जाना, हमारी गलतियों से कभी टूट न जाना, हमारी शरारत से रूठ न जाना, हमारी शरारत से रूठ न जाना। तुम्हारी चाहत ही हमारी ज़िंदगी है, तुम्हारी चाहत ही हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कभी हमें भूल ना जाना।

सुनने वालों के खिदमत में अदाबर नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, मई के 12 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाहों रेडियो के फूल टीम के तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफर पर जा रहे हैं, सफर मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ नैदरलैंड में आए, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतजार कर सकते हैं, इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नगमे, नए और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं, बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन आप सुनेंगे।

लुट गया मेरे सपनों का डेरा। ये आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन सुन रहे थे।

है दिल लेकर नजराना, आ गया तेरा दीवाना। अभी आपने मुकेश और साथ में आशा भोसले से सुन रहे थे रेडियो फाहोन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और साथ में मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 6 मिनट बाकी 1:30 बजने में आप फाहुन रेडियो पर चुन हैं। मोहब्बत हो या इज्जत, मोहब्बत हो या इज्जत, किसी को उतनी मत दो कि वो तुम्हारी कदर करना भी भूल जाए।

दिल उसे दो जो जहाँ दे दे, जहाँ उसे दो जो दिल दे दे। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और साथ में आशा भोसले से गीत सुन रहे थे।

जब कोई तुम्हें प्यार से बुलाएगा तो मेरा नाम याद आएगा। भी आपने नदीम और अलका याग्निक से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहुन के माध्यम से। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, देखा जाए तो गाने वाली है लता मंगेशकर और साथ में है मुकेश जी।

बोल मेरे तकदीर में क्या है। अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम है हरियाली और आस्था, संगीतकार शंकर जय किशन और इस गीत का लेखक है शैलेंद्रा।

हम भी है, तुम भी है, दोनों है आमने सामने। अभी आपने मुकेश, गीता दत्त और लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

मिल गए आज मेरे सनम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। ये आपने आशा भोसले से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 2:09 व्यतीत हो चुका है।

हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अभी आपने गुलाम अली से ये अति सुंदर गजल सुन रहे थे। मेरी पसंद भी लाजवाब है। यकीन नहीं है तो खुद को देख लो,

एक बिजली गिरी और मैं मर गई, मुझको क्या हुआ खुदा जाने। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत को सुना। याद रखना, याद रखना किसी के लिए रोने से, याद रखना किसी के लिए रोने से कोई अपना नहीं हो जाता है।

मेरे खुदा, ओ मेरे सनम, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत को सुन रहे थे। 6:30 व्यतीत हो चुका है। हमारा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद रेडियो फाहुन के दोस्तों के ज़रिए से प्रोग्राम आप बाकी के सुनेंगे।

मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत को सुना, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत का लेखक है आनंद बख्शी।

दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। अभी आपने लता मंगेशकर और पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में।

और ये जाना पहचाना चून है, इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया है खुद मैं बीबी साहिबा रहीम बख्श। आपने एक से अभी तक हमारा प्रोग्राम को सुना, प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बाद यहाँ रेडियो फाहन के दोस्तों के ज़रिए से आप बाकी प्रोग्राम को सुनेंगे। तमाम सुनने वालों की खिदमत में खुदा हाफिज़, नमस्कार।

0: प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिससे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से।
1: वो जिसने गम ली
0: आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम।
1: प्यार को बेच दिया नशा दान
0: पहला डर भरा गीत माइटी मुकेश की आवाज में सताले है जहां।

दूर मेरी निगाहों से, दूर मेरी निगाहों से तुम जाया न करो, ऐसे मुझे तर पाया न करो, ऐसे मुझे तर पाया न करो। मिलने को बहुत चाहत है मुझे, मिलने के बहुत चाहत है मुझे, लेकिन मिलने के बाद जुदाई से डरता हूँ।

इतनी कमजोर मत बनो, इतनी कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतनी कमजोर मत बनो कि आपको कोई तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाले खुद ही टूट जाए।

मुझे यू भुला न पाओ के बाद जिंदगी है तड़पना, जिंदगी है तड़पना, तड़पना है जिंदगी। किशोरदा के आवाज में।

0: बॉय।
1: क्या हुआ तेरे और अदर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यह समाप्त होता है। फाउन हिमसाइनर पर आप चून है हर एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 905-2824 सीफर पर आपको तार करना है। आसमान पे आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने को।

कहो प्यार है तुमसे, अगर प्यार हो गए तो कह देना। मच्छी पाना, ये हरियाली और ये रास्ता, फिल्म हरियाली और रास्ता का सॉन्ग है, मनोज कुमार एंड माला सिन्हा दोनों फिल्म में काम किया। ये फिल्म देखनी टू एज तक में जो रिलीज हुआ, इन पर म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन नाइटिंगेल लता के आवाज़ में। आप एक गीत को सुनेंगे।

हरियाली और ये रास्ता दोस्तों, ये फिल्म जब बना निकली 2016 उन दिनों में माला सिन्हा एक बड़ा सा एक्ट्रेस था और मनोज कुमार का शुरुआत हुए था। तो इस फिल्म में मनोज कुमार को 1,500 यूरो मिला था, रुपीस मिला था काम करने के लिए, और माला सिन्हा को मिलियन। जी हाँ दोस्तों, फिर भी मनोज कुमार को उस बात से प्रॉब्लम न था, वो जोर तो से फिल्म में काम किया। लेकिन एक एक एक बात था, जब शूटिंग के समय, जब मनोज कुमार का शूटिंग का समय होते थे तो हेमा मालिनी जाकर उसके आसपास खड़ा होकर और ताकते थे। तो मनोज कुमार ने एक बार में हेमा से मैंने कहा हेमा माला सिन्हा होना चाहिए। तो माला सिन्हा से पूछा मनोज कुमार कि क्यों आपने मेरे शूटिंग के समय मेरे करीब आकर खड़े होते हैं। तो माला सिन्हा ने कहा मैं आपसे सीखना चाहते हो। तो माला सिन्हा एक पुराना एक्ट्रेस था, फिर भी मनोज कुमार शुरुआत किया था और कम पैसा पाया था, फिर भी माला सिन्हा मनोज कुमार से सीखना चाहते थे। तो इस यही बात में कहना था दोस्तों कि सीखने में कभी कोई पुरान नहीं होते, बूढ़ा या जवान नहीं होते, हमेशा लोग सीखते रहते हैं। सावन को आने दो, जैसे मैं सोचता हूँ तो सावन का महीना है, तो सावन तो हो गया है, अभी नहीं बीता, लेकिन जोर तो से सावन जारी है, तुम्हें गीतों में बांधूंगा, सावन को आने दो।

मैच किया है। आपने सुना मेरे दिल के कहानी दिल के बाद, और दिल के बाद आपकी दिल क्या कहते हैं, टिक टिक टिक टिक टिक टिक मेरा दिल डोले।

कि एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसान पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार अपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

साधना सो रही है, साधना जी सो रही है। जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज उसे गले में उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज, तो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

जिंदर कुमार के आवाज का और जिंदर कुमार का दिल के बाट अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बाट पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज। मुमताज का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूल था प्यारी सी फूल था वीएनटी माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वीएनटी माला, उसके सामने राजेंद्र कुमार। राज कपूर जी क्या फरमाते हैं, मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्तनारा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

शेर के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निगरी आतन शस्त्र की बात है। जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शामी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शामी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शामी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शामी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने, एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

फिर के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंदुस्तान रेडियो पर, आप चुन है हमेशा आप फाहन हिंदुस्तान सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दफ्तर से न्यूज सीफ तक फिर सीफ पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों, ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ओ माजी रे

बंदे हार्ट का सॉन्ग में पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल द्री सीफन तक पे जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन में सीरियस डांस से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाजा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज क्या कहा दोस्तों, एक रोज ये शूटिंग के बाद मुमताज निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेकर चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये भैंस वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ भैंस खड़ा हुआ है, तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आदमी रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ किया मुमताज जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाया। मुमताज उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज का कहानी फिल्म बंदे हार्ट का।

शर्मा जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोरदा के आवाज में, और साथ ही साथ लता।

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन फाहों ही सारे पर आप चुन है।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम।

डरभरा गीत का प्रोग्राम लगभग आधे घंटे तक रहेगा और पहला डरभरा सॉन्ग जो मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ आप सभी के लिए मैं पेश करूंगा, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया।

आज हम आप लोग को कुछ नए गीत भी सुनाएंगे। और दोस्तों हम आ गए हैं स्टूडियो में, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। अभी अभी आपको एक दो तीन मिनट के बाद, और आज भी मंगलवार को 6 का वक्त है, अभी आप लोग को हम देश और विदेश के समाचार सुनाएंगे। बस हमारा रेडियो पे अपना चून लगाए रखना, जॉनी है हमारा नाम, हो गया है अखमुनितन फोर जैस इर। मंगलवार की शाम के प्रोग्राम है, आज 12 तारीख है, और 12 तारीख जो हो गया है मई में, ठंड का मौसम है, तो अभी आप लोग को हम और पूरा दुनिया की समाचार सुनाएंगे। एक गीत आओ सुना जाए।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे मत कर इतना गुरूर। कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं तो पंकज उदास अलका यागनी क्या बताता है। मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम। हाँ दोस्तों, कितनी चाहत छुपाएंगे हम। और छुपाने के बाद हम तुरंत चलते हैं और अपना देश और विदेश के समाचार की ओर। हमारे दोस्तों, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज है मंगलवार, 12 तारीख मई हो चुका है। घड़ी की ओर देखा जाए तो 1 मिनट ओवर सेस चुका है। लाइव है आज भी हम, और वो भी फेसबुक के माध्यम से भी।

Καλά να γιάνει ούτσινιτς, καλά να γιάνει γιάτς, ρωσοτιμάτα διγή, χαμκό απνί αζιρβάδε. एक बार फिर से कहते हैं तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी नाम सत श्री अकाल।

जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है। फिर से एक बार हमारा काम यही है, हमारी मोहब्बत भरी

और हम तुरंत इसी चून से और जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं समाचार की ओर हम चलते हैं हमारी जनता। दोस्तों बात चीज बहुत गंभीर है सूरीनाम देश में और हमारे सूरीनाम देश में गंभीर के बांज किया जाए तो भैया वहां पर और क्या किया जाए, बारिश बहुत जोर तोर से आ रहा है, परमारी बहु बुड़ गया भैया, शहर सब बुड़ गया है और जनता हाय हाय चिल्ला है कि बचाओ बचाओ बचाओ। निकेरी के लोग भी बहुत बहुत इसमें और चिल्ला है भैया कि निकेरी के रास्ता बहुत खराब हो गए, टूट गए है। तो सिमोन के बोले है एक से एक मीडिया के सब सूखे हैं, बुलावे हैं और फिल्म बनावे हैं जगह जगह और दिखावे कि लांटी दे कुछ करे ना है और चारों बगल बुड़ल है भैया। निकेरी के जनता फिर से एक बार बोले है कि हमारा निकेरी के रास्ता सब बुड़ गए, अब मिलांस के भी चाहे चले के जब कुछ गड़बड़ी है तो आमस्तर यानी कि ब्रांतवेर के भी तूफान चाहे जाए के तो बोले हैगा ये रखेरिंग सिमोन कुछ ना करे है, अब बोले न संतोखी करके गए है, अब बोले ये भी कुछ ना करे है। तो निकेरी के जनता आप लोग इस रखेरिंग को बैठाए है तो इसका काम है आपके प्रॉब्लम अपलॉस करे के। अब चांद तो दुनिया पे ना भैया, अब चांद ना है बोलिए कि चांद बुराई से या चांद मर गए तो ऊपर से कस के बरखा बरसावे है, तो जाने है जब कुछ होत रहा तो चांद संतोखी करत रहा तब तो दुनिया बना है दोस्तों, तब ओकर स्किल रहा है। और आप लोग जाने निकेरी के जनता लोन एनडीपी का रखेरिंग के पूरा वोट देकर आज सिमोन के और रिसलान के प्रेसिडेंट बनाई से और आशा ही है करे रहा कि सब उस सब के प्रॉब्लम अपलॉस करेगा जो संतोखी ना कर पाए से। लेकिन अभी तक यहाँ के जनता निकेरी के जनता तफरी डना है भैया और का बोले है अने ई रखेरिंग के भी बोले है तुम भी कुछ ना करे है जैसे संतोखी ना कर ले रहा। तो हमारे जनता हमारे दोस्तों आप लोग को और आगे हम अपना प्रोग्राम को और लेकर चलते हैं और बताते हैं। अब देखो भैया यहाँ क्या हुआ है, दृक्ष भाई बहुत जबरदस्त दृक्ष के कारोबार यहाँ है। एको ब्रासिलियान के औरत के भैया ना ब्रासिलियान के औरत सरनाम में ओके सबन एगो दृक्ष बेंद है ब्रासिलियान के सूरीनाम में और बताई सेगा ई औरतिया के बकड़ के बन करे रहा सबन ब्रासिलियान के एके सबन हुआ पे और बोले ओके चाहत रहा कोक इन कैप्सुलस ढको लीले के, तो जाने हम लोग बोले ला बोल चस्तोत औरतिया के जबरदस्ती सबन बोल चस लीलाए रहा भैया ब्रासिलियान के औरत के और बोले इस देश में ई हफ्ता में नचनाल एगो ऑर्गेनाइज्ड दृक्ष बंद है जो नो के का बोले रहा अन लीलायरा भैया से सो में फॉल्स बलोफ्टन ऊपर वेरक ना रेड लैंड सेन खलोक में फॉर कॉलन सेन फास कहोदन दिस एक ब्रासिलियन से बुलाए रहा दूसर की आओ यहां पे तो के मोई मोई हम काम हम देवावे बाकी ओके सेवन दृक्ष बंद पकड़ के बंद कर ले रहा और जबरदस्ती ओके दृक्ष बोल चेस ओके लीलावत रहा भैया और ब्राजीलियन से फेडरल पुलिस व्यर्थ स्लाग ऑफर को ध्वंगन कोकाइन कैप्सुलस इन तसलेकन फॉर स्मोकल ट्रांसपोर्ट ना यूरोपा बोले तो के चाहेगा कोकाइन के बोल चेस वा लीले के और तो के चाहे ले जाए के यूरोपा में। तो यहां पे बताए गए है कि रेकनिस ऑपरेशन 6 तारीख मई के और फुरक करिसेगा साम इंटरनेशनल साम वर्कर्स इन हेच से फेडरल पॉलिसी और रहेगा पर्नमान बिको इस सामरवर्क में फेडरल पॉलिसी सरनाम से और जाए की औरतिया के बफरेट करी से भैया बफरेट कर दी से और अक्षिया भैल है एच वेसल भैल और बोले है दोनों देशों ने कर बारे में तो बोले बैतला लेखाल वेरक सौसाइन फरिक्तन कोरना द आन कॉम से सरनाम सौसे एक्त से ऑन फोर्थ जैसे छोड़िया औरतिया आयल है सरनाम में ओके सब डायरेक्ट ऑन फोर्थ कर ली
singa euro kabel internationaal drugshandel khatin obataye gaye hega bole de politie vermoedt ki auratia inzet zogenaamde drugsmuil daarbij worden capsules met cocaïne het lichaam vervoerd en voor smokkelvluchten naar Europese bestemming to Europa moke pathawat ra lelai lelai bhaiya aur okar khasont hai is risiko rahay kar bare mein je lilio bhaiya jo pet mein dag gaya cocaïne ta jaise bhaiya godo bok broko siri paya ho jaye aur tu mar jaiye bhai aur yahan batawe hai khasont hai sarak ke kar bare mein bole hai ki arrest ka risiko raha om het uit door criminele netwerken die kwetsbare personen recruteren met valse beloften om een veilige terugkeer naar Brazilië mogelijk te maken. Ook heb Hinse Patadise na haar bevrijding zijn de diplomatieke producers opgestart om haar veilig terug naar Brazilië mogelijk te zijn. Federale Sipahijon Hega ook informeert is vrijgegeven om mogelijke verdachten of aanhoudingen. De zaak is onderzoek op de ko tipakra heb ja, kabule hega een drugsbendoen ki na pakra hai tu to jano bhaiya usar naam hai aur vishwas bahut kam hai ki sabhar pakad pai ki na pakad pai bhai ek baat aur hai bara tamasha are chon chakallas bhai le nani tu lon jane to an kabule hai okay ishan bhaiya ndp ke admira ishan van der sun bhaiya aur wo kabule Kering ke admir ha bouters ke tijd pe to ab ik ka kari si abbe bahut hoogmoedig khelat raadam ya likhal bhaiya hum na bolila te ik gaile Surinam ke DSB bank me bhaiya DSB bank me gail hai aur hua pe jhagda bhaile bhaiya jo hua jhagda bhaile DSB bank me hier betawe he to hua ke beveiliging ik ke bahire nikar de ise bhaiya ishane fundersan ke bahire nikar de ise wadi ne miya chahe jahan jat raha ladak phadat raha to hiya batawe fundersan jo raha bole antarctic mai ke sab ke bawakar ik ke jabardasti uthai ke bahire bik de ise bhai bik de ise ka bole hega dsb

En heb ik deze bollega bang bollega ten zeerste de broteur en inmiddels contact te hebben opgenomen met de betrokken cliënt. 81-jarige Eugène van der Zaan. Kiezen van bij heb ik deze. Maar hoe wat hij op na bij op van der Zaan kaker in bolle a tori nog bato. Van der Zaan bolle tori a toro doen hoe je bolle tolo hem bij heb ik le he. Ha, hij zegt je aan na van der Zaan bolle. Op van der Zaan का करी से भैया ई गईल है फिन से बंकवा में हां हिया बताए गए है फंदरसान फिन गईल है बंकवा में भैया और हुआ पे गईल है ओझाई करे बंकवा में भाई हां गईल है ओझाई करे बंकवा में ई सब भैया हमारा देश के अपरे के बहुत महान बतावे है बौतस के रखेरें के और ई रहा रखेरें के आदमी रहा भैया हुआ और बतावे ईशन फंदरसान के तभी का गईल है भैया एगो विनती एगो ओझा के लेके गईल है जेकर नाम है बासी रामोन मैकनेक के सोमवार के सवेरे लेके गईल है और बोले अन्वेषक मेरे फिलियाल डीएसबी बैंक के जो कोरोना स्ट्रांड में बा हुआ लेके गईल भैया और हुआ पे गईल है ओझाई करे दर कबूत ना दर बिल दन फसे रमोनी ऑफ सोशल मीडिया इन सिरिनाम मसाल वर्दर कदेल En voor veel reactie zorgde. Toen heb je bij jou mekanek doen. He, rituelen bedoeld om kra. Interlijk bescherming van der Zaan terug te roepen bij een grote val of ongeluk. Vooral bij een biggie man of oma blijft de kra op de locatie achter. Dat is van der Zaan overkomen toen hij op grof en hard. Handige wijze naar buiten werd geduwd en hard op de grond viel, stelt hij. De api bank met geile ojaikere bhaiya. Bole geestelijke balans gaat die ritueeltje geil gij. Bole van der Zaan te herstellen. Of bole hega om de geestelijke balans te bhaiya. Itra barka barka admiloon. John regering ke admiraha. U geile bank met ojaikere nana. Socho hamara des me ojaai se chale ka. Deswa ओझाई से कहां चले भैया अब देखो और आगे हम जाई तो भैया राजेश रामदत्त भी हमारे प्रोग्राम में आकर जुट गया है तो राजेश आपको हम बहुत स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में भैया राजेश रामदत्त आ गया है तो राजेश सुन काबल भैया तीनर भैया एगो तीनर सरनाम में नम ओम वेल हो गए है ये दम ओम वेल हो गए है एगो तीनर और ये कैसे ओम वेल भैया ये एगो कुकू खाई से भाई तो सुरनाम में जइयो कुकू ओ जे खइयो तो जान लियो कौन कुकू हम खाइला त हिया बता ले एगो कुकू के नाम बा ओरियो कुकीज बकी यहां बतावेगा और ये कुकी खाई से का दुई गो स्कूल के लड़कन खाई से नानी और ओमवेल भईले को 15 बरिस के और एको 16 बरिस के 11 तारीख मई के बात है तो भाई ई सब खाई से कुकू मा कुकुआ में कैसे ओमवेल भईले नेली रघुनंदन महावीर भी हम आपको स्वागत करते हैं तो नेली ई दुई गो कुकू लड़कवन खाई से कैसे ओमवेल भईले मालूम परल है कि ई कुकुवन में दुर्योक्ष में बनाव ला भाई सरनाम में अब कुकू भी दुर्योक्ष के बने लगा अब कुकू खाए के लड़कन के अब हुआ डर है भैया हिया बताए गए है बोले मैं दुर्योक्ष फरमेंग द ओरिया कुकीज ऑन द स्कूल लीडर द फरकोपन एंड ऑफ तू त दिनन त कुकू में जे तू दुर्योक्ष बनाए के लड़कन के दिए त बदुलेंग यही है ना कि लड़कन को इन से फरसलाफ होई अपन लड़कन के स्कूल के लड़कन के जोन हमारा देश के भविष्य है जो हमारे देश के तू कौन से ओके तू स्कूलिए में से दृक्ष खवइयो भैया त हम लोग के देश के तू कौन कहां जाएगा तरी सोचो ई चीज भइल है हमारा देश में और बताए गए हैगा मेड स्कूली एरेस आन बताए गए है Twee dagen daarvoor hadden de schoolleden via TikTok een video bekeken waarbij een echtpaar koekjes consumeerde waar er drugs was verwerkt en daardoor high werden. Deze koekjes staan bekend als Idibles. Je kon ook koekoek namen Idibles, maar ja, Suriname moeite doe je mila beetje raadje joa. Obole hega, ik is van Kaise, koekjes wilden uitproberen. Daarbij gaf RS een medescholier deze, en ook haar baba Ja, de vader van RS die buiten was van om de jongeren op te halen. Merk er eens aan. Kie ook
हरे

heeft naar huis. Haar moeder merkte kort daarna op dat haar dochter kort aanwing. Met lef sasna liep aan het haar. Ook haar hart kloppen kan het haar. De ook haar vertoonde ook naar haar kleding uitdeed. Obole hega. De moeder aarzelde geen moment en deed direct de slachtoffer. Mijn moeder politiebureau gelegen. Obole sipa hij ook een partij ze direct is te hulp. De eerste hulp met patamilel hega. En medische team stellen vast dat er marijuana in de bloed van de tiener was. Waardoor zij het op observatie werd genomen, wil ook er koen met ganja milen. Tijdens voorzichtig van een onderzoek, 11 mei, ik doe verdachte, ik heb pakraan. Sipahi bureau Bankerise, of wil ik koekjes aangetroffen, koekoen wiepijse. Het vermoeden bestaat dat hij de koekjes maakte en verkocht. Verder denk ik ook nog komen vast te staan dat het niet de eerste keer was dat de verdachte RS deze koekjes had gekocht. Beide verdachten zijn de afstemming op isep kikuku jaiga bhaiya jahliya me khai. Deko kauncha kallas huwe hamare anani ki school ke ladkan ke kuku banai ke khawawe hai. Ab deko hiya se jayyo Surinam Rajesh ta apan passport bhaiya kam se kam जहां तू रहिए हुआ ना धरिए कोई जान ओई चन आदमी भी ना दिए कहीं चुरवा दिए कहीं धल लिए वनिया पे गो जबर जब रूप भैले सन्ना में भैया रूप भैले को बैतल अंदर के ओकर का बोले हैगा ओके बहुत ब्रुताल परमारी वो में सब स्त्रात रूप करी से पासपोर्ट आसपोर्ट लेके ना चलियो भैया यहां बतावे घरे छोड़ दे नहीं कहीं लुकवाई दियो यहां बतावे द मन फॉर लोरदार बे ओकर तास ओकर रेस डॉक्यूमेंटन एन अ ग्रोट गेल बद्राग ओकर सबन लूट ले से नाम पे और इचे बोले त्रिस्त्रात के वांछित है हमारे जनता और बोले पलोचने बनाडर दोनों अनबकेंद मन दी फरदाख्त ग्रीप ऑन फॉरवर्ड द स्कोडर तास फन हिज स्लाक्टओवर ओके लीक ओकर तास पेल भाग जमा उकर बिचारा के टिकट रहा भैया तास में पासपोर्ट रहा और 3000 यूरो रहा दोसन अनबकेंट है मैंने ओम के फॉर कॉन्स्लाक्ट ऑफर नीट अनगेवन विया वेलकम रूट द दादर इस कफले ओ भैया अपने टूरिस्ट रहा तो जान ना पाइसेगा ना जान पाइसेगा कि कहां कोंची और कैसे लेके सबन और भाग्य है हमारे जनता अब देखो कौन चकलस भाई लेनानी सुरीनाम देश में भैया लोन रजेश सुरीनाम जइयो भैया ढेर के कंदों में लेके जइए वन जोन जोन आदमी के ना है बांटो डडिए ऊ बदुल करीला वन थेसुआ में बड़ा ढेर हा इफे फिरस होई गया भैया एच होई गए है याद करियो जॉनी का बोले है हाँ जइयो भैया त कंदोम खबराई करे में ना चुकियो जा हो सके शायद दुई गो तीन गो लगा ली हो जा चाहे बोट के हेडा इनम समुंदर के अब ऊपर दिखाई लेकिन अपन फेल है जोन है वो बहुत वो है अब देखो सुरीनाम के खसों थाई सरख जोन है स्टांसी से बोले देसवा में बहुत ढेर सोवा सोई है भैया और हाई फे मतलब एच सोई है भाई बहालफ दैट इट फेल विद बसमतिंग इन सेन को कोस्टेड ब्लैक ओ की बोले आदमी लोन बहंदल और सोरख नो द के फॉर लाखर इस आदमी लोन दतरा तरा ना जाए भैया ओकर बारे में और बोले ओ मेर सिख तक रहेगा ऑन द ऑफंग फॉर द प्रॉब्लम फॉर दिस मान तेगो लंदलक टैक्स एक्सी भेल की सबको जाए के अपन टेस्ट करवाई सके है तो ई अक्षिया है 4 तारीख से और 15 तारीख मई लेक बिरकर जाए के खरातस में अख्तन फेफ तक टैक्स लोकासी जो देशवा भर में है जगह में जाए के 3 और 10 मिनट में और एक क्वार्टर के बीच में जाए के अपन टेस्ट कर सके हैं बोले मौरीन फन दैक फरमीन अलखमीन डायरेक्टर मेडिसिन फार्मेसी जंदिंग बतावे हैं तो अगर ये आम सुरीनाम बाटो आइलो बाटे और जाए बाटे तो जइयो भैया अपने के टैक्स करवा लियो सरनामुआ भर में जैसे चिकुनगुनिया आफर मचाई से ऐसे एज आफर मचाई से भैया तो ओके ओवरड्राफ्ट जोन हो दो सेक्सुअल ओवरड्राफ्ट वुमेन से वे वे के अलमल दमाख के खान लाख भैया
veranderd. Maar ik wil het wel zeggen. Ga 2 of 3. Ga een condoom gebruiken die kwaliteit ook is. Van ja, kwaliteit je joh. Atal patal je na gebruiken joh. Nou, oro je joh. Hoe heb je janta ke je. En wat je hier se je joh te. En bole he ga man kitere admii loon hier jai. Bhaiya kilwa loon jai hai. Suriname des me tu loon samjho hai. Apan khanit kare kuch na kuch karo. Bhaiya ma veilig doon. Van dijk roep samenleving op om gebruik te maken van Tetsweek. Wanneer we geen mogelijkheden hebben, dan schreeuwen we om mogelijkheden. Dit is de mogelijkheid, maar maak er goed gebruik ervan. Bole he ichi jega to gita kali bilanga damu wala aige he. Oro gita aapko hum bahut pyar se apne program mein swagat karte he. Thank you well gita ji. Bole he ga Suriname mein itra hoige AIDS gita ki admi loan bole jaise chikungunya hoige oise AIDS hoige soa hoige he. To wahan pe 10 tarikh aur 15 tarikh mai le bole free admi jaike aur apne ke test karwai sake he. Bole binnen de aanpakkelijk nadruk voorkomen om overdraag van moeder of kind zwangere vrouwen worden getest op HIV. Aur batai gayi hai ki bhaiya lo hiya se jaiyo ja Suriname se na jaiye babal kare bhaiya deswa bhar mein jaise chikungunya kaate hai aise hua AIDS hai bhai aur soa hai en daar moeten wij met ons allen namelijk alert zijn. Dat gaat het om. Oh hamar to kaam hai bole ke aur baki ab tor kaam hai kousu bichiyo ki kousu pahiriyo apne aap ke bachaiyo ki apne aap ke na bachaiyo. Ab dekho bhaiya aap loon jano hai ha hum loon ke boli la diran diran bhel bhaiya jon janavar ke peete paate chulun jano to te ego 17 baris ke launda bhai ha 17 बरिस के लौंडा भैया एगो बिलार के भैया बारा मार मारी से छुड़ी से के सिपाही पकड़ी से जिके घर में बिलार है भैया उ तो जाने उकर प्यार है द फरदाख्त सो अन पुश फंसेन ब्यूर फ्रॉम एरस तक हेवन में सांदल एंड फर्स्ट कलेक्ट और बिल्ड ऊपर से फिल्म बनाए रहा भैया जैसे अमिताभ बच्चन के फिल्म बनाए रहा सोचे हमें अनमी लोन बोले हैगा बड़ी तारीफ करी कम बिलार मारीला भाई बोले हम बिलार मारीला तो जैसे टिकटॉक सब करे ना गीता ऐसे ही बिलार मार के अपन टिकटॉक बनाया रहा तो बताई गई है संतो बोमा के सिपाही एक पकड़ के ले गए है कि ये दीर में संदलिंग करी जाओ ये स्ट्राफबार है द वीते वे अलमाल में से सो खाते तुख अब हम तरी जाई हमें जाई तरी नीदरलैंड के ओर नीदरलैंड के सिपाही का करी से भैया पकड़ी से 10 गो आदमी के पकड़ी से भैया और बतावे हैगा 10 गो में से 8 गो रहा कोलंबिया के आदमी और 2 गो हॉलैंडर रहा भाई दी वर्डर फरदाग और इसे अफेयरसिंग में सैंडलिंग इन ऑन फूरिंग कर रहा 2 नीदरलैंड से को 42 एगो 47 यार के फरवरी में भैया सबन एक पकड़ी से दुगो के कोलंबिया में द मानन सौदन फनोई दार अ रोल हैव गस्पेल इन ड्रग्स हैंडल मेट यूरोपा तो लो जानो कैसे हजार ने कितना पकड़ा ने ड्रग्स हुआ तो फोकस पॉलिसी स्टोन से नो कांटेक्ट विद द इन्फ्लुएंसरिक ड्रग्स कार्टल तो इस ड्रग्स के बारे में आज आप लोग को बड़ा ज्यादा बता चुके लिए बड़ी लंबा चौड़ा लिखल है मौसी मां हम तो के का बोले है इतने बतावे अब देखो दादा अब क्या हुआ है आओ जानो अबे ईशान फंडरसान के बारे में बताइली भैया तो ई और बाउटस के रखेरिंग में रखेरिंग के आदमी रहा एक के संबंधी एसबी बांग का बोले बफेलर उतार के बहरे बिगी से तो अब ये रमिया गईले ओझाई करे नानी हां गईले ओझाई करे ई बात है सुरीनाम में भैया हां तो और आगे हम आपको अपना प्रोग्राम लेकर चलते हैं हां
तो दोस्तों बातचीत ई होवे है यहाँ पर है तो लोन जानो है निकेरी में सब के बोले है तो कौन फा निकेरी रशीद दुखी भैया एंडे पेयर है जबड़ का और रोका बोले है देना में भी बैठा था तेज से रखे रिंग फन बाउटर्स के बारे में तो लोन जानो है तो रशीद दुखी अब का बोले भैया रेसलांद के और रेसलांद के और सिमोन के अब के रखे रिंग के अब की के रखे रिंग के बोले फोकस आउट एंडी पे रशीद दुखी बोले है बोले अब तक बोले इस सब बहुत बोले कुछ करबे न कर जैसे वही न खदान इन एटलान तो राज रामलगन आज भी हमारा प्रोग्राम में आकर जुट गए हैं तो हमारा राज आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को। तो आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है दोस्तों और आपके पता है मंगलवार के है और शुक्रवार के हमारा प्रोग्राम चलते हैं तो यहाँ बताए गए हैं रशीद फिर रशीद दुखी बोले हैं बोले अब तक तो नी तो हेल वैनक बराई बोले कुछ बराई न हुआ सारो बगल में भैया अरमी लोन सरनाम में गीता अरे बोट चलावे डाम पे मोतर बहुत से भैया तो चो कौन ची होई गे दसवा में कौन ची होई गे बरखा इतना बढ़ से है और का बोले पहले जब बुढ़ रहा बोले चांद करवावत रहा था चांद ऊपर से पानी बरसवावे हमें जना भैया द रियो ले रहे हैं द अफोर्स एंड आलमान इन श्री नाम फर्स्ट स्टॉप भैया। अच्छा ओके छोड़ अब एक बात हम बतियाला रशीद पीर खान का बोले हैं तखलाई कर तय हम बोली ना पीर खान रशीद दुखी का बोले सॉरी मैं से बोले हैगा 4.5 बरिस बोले फिर एन हाफ ईयर ऑफ करेक्ट वैसे कान वर्दन बोर दिल आन खसी सही फोन प्रियोड 5 बरिस को समन की शक्ल ले रहा और बोले हैगा 4.5 बरिस बोले प्लीज मिनिस्टर 4 बरिस है दुखी इंटरव्यू रेडियो पे बोली से और यहाँ पे और चीज बताई से बोले देसवा बोले अब तक ये सब कुछ न बराई करी से फॉल्क दुखी बोले है का स्टार्स हो ओपासन दर्द पार फंड स्लेक्ट मिनिस्टर हर एपोटासियन खुद वेल नीत खबर खोयें सो आज दर्द में वेलन अनेसंतो की इस कबूतर में परसों आज अल्बर्ट रामदीन एड परमेनान सुदीन आज मिनिस्टर दुखी फिर ओफरगंज दर्द रिशोफिंग फंड मिनिस्टर नीत लो देखिए तो हम लोग तो जाने ला भैया कौन कौन चक्कल सल भैले जोन फे यहाँ पे हार गए है ओकर मिनिस्टर लोन जोन है अपन काम नमुई करे रहा वार दूर फे यहाँ पे अनलास हो गए दोस्तों आप लोग जानो है और ई रखे रिंग में बोले रशीद बोले है रशीद बोले दुखी बोले है भी बोले मोई से एक काम ना होवे है हाँ। और दोस्तों अब तरी हम जाए तो लोग जाने देसुआ भर में सोना खोदा है जंगल में और बोले हैगा भैया पोरक क्रॉकर है हाँ खवन खराब फॉर फॉर लोप के इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फन स्लॉक तो फिर इन मेन पेशन खफालन यहाँ बताए हुए हैं अरमिया भी जाए गिर गए पानी में तू जाने भारी भारी गढ़ा खोदा है भैया श्री नाम में तब जाए के सोना मिले है बहुत आदमी मर जाए भैया पेटिए में गिर के कितना सोना खोदत में मिल जाए है और कितना है नाना जो रूफ में मराई जा है हाँ सबन रूफ करे बड़ा जोर ब्रासिलियान और हुआ के अदमी लोन चोर चपाटी जाए के बेनलांत में और रूफ करे बड़ा जबर भैया तो कितना आदमी दगाई जा है। तो ये बात है हमारे जनता प्यारे प्यारे जनता अब देखो पानी इतना बुड़ल है तो अब का बोले है असेंबली ले इफानाल्डो प्लेन एंड पेस के बोले के कर कसूर है अरे भगवान के कसूर ना दिखा देवे तू जाने एक एक गो अदमी ना बोले अनोमी फौतियर है गीता कैसे बोले अनोमी फौतियर है हाँ। तो बरखा बरसे तेरी फालतू बोले वी स्किल्ड फन अंडर वाटर ओवर लास्ट पहले रहा चांद मर गए बेचारा तो अब के कर ऊपर उंगली दिखाएगा तो बतावे है इतना बरखा बरसल है बोले रीबा घर में आदमी के पानी
स्कूल में पानी आदमी जो काम करत रहा काम पे ना जाई पावे वर्क नहीं मच के हुन हुइस नहीं फलांतर ओनर्स नहीं मच से हुन बसितंग इनकमस्टन बदराई फॉर वर्दन ऑटोमोबाइलिस्टन ऑटो जो चलावत रहा भैया स्कादा होवे ऑटो में नोट को दवांग दूर ओवर क्रॉस रूम दे वीकन मुसन से राइडन और बोले हैगा फ्रस्ट्रेशन दे सो हमें गुस्सा है मखतलो से मा द फ्राग की इक कर कसूर है Wie is schuldig van de overlaas? Anomi! Raj Aishnana bole hai Anomi! To hiya batai gaye hai hamare janta. Het antwoord is niet eenvoudig. Want de waarheid is dat wij als samenleven collectief gefaald hebben. Te ab bole hai. Bole santoki ke kasoor na hai. Bole janta ke kasoor hai. Aur pahle janta ke kasoor na raha. Minister ke kasoor raha. De overheid draagt een zware verantwoordelijkheid. Maar ook burgers moeten eerlijk durven kijken naar hun eigen gedrag. Bolle, we kunnen niet blijven wijzen naar de regering terwijl sommigen van ons zonder schaamte de oude koelkasten, vriezer, matrassen en andere afval in de trenzen en goten dumpen. We kunnen niet klagen over verstopte afwateringskanalen terwijl men de auto ruiten, lege flessen, plastic bekers en andere vuil op straat gooit alsof het normaal gedrag is. Dat tu janta ke kasoor na de bhaiya bahut lamba chowda hamdeela je tu bole hai janta ke ki janta botal bige sab first stop hue hai janta aiskasi bige pani mein first stop hue hai ta rakhering ke taak hai ऊपर ना बूटू मारे उस सब के खात ऑप्लोसिंग धरे सेट हेल्थ जैसे हम लोग के नीदरलैंड में है कि बोतल पे 15 सीस के तरह धरिए सेट खून अन बतरख ऑफ द फ्लैशेस मेंसे ते देखिए जिंकियन गोत्र हुआ मसे अपरे से हल के निकारे जाए के बेचे खातिर और बेच के पैसा किन के दृक्ष कीने के एक को पेट फ्लैश तो ना पाइए एक को बोतल ले ही खडाम पे ना पाइए एक को फॉर स्टॉपिंग ना पाइए दैट इज एन hele eenvoudige oplossing maar dit moet toch de regering gaan doen भैया राज regering के ना चाहिए चीज़ करें कि की रखेरिंग खाली बोले कि जनता भीगे है सोरखे फोर की जनता ना भी कहीं ना हिया भीगा है नीदरलैंड में भीगा है हिया तो फेलस बाख में अदमी लोन जा है और वही मसे ब्लैक वन निकारे जे मस्तासी खेल थे और सब ले जाए और अल्बर्ट है इनमें और दूसरे दूसरे जगह पे का बोले लीफर करके ओसे सब अपन दूर बड़े किन के भी घरे ले जा है और जो पेकड़वन है न सेड़ियन है वहू बीन के जा है एगो ब्लैक बीरी किन लेवे है या कुछ किन के पिए कहे ना सरनाम में हो ही सके और तो इधर चीज ये है भैया जो यहाँ पे लिखल है कि ऐशकाशी बिगा है पानी में वो सब चीज बिगा है तो समुद्र खेरिंग एंड फिर सोर्ख कि हुआ पे भी ये तो के ख्रोड फैल है ख्रोब फैल है मुझे एन अस्पराक माकर द वर्टर ख्रातस अपगहाल दर खाते ओ मेंस तो ऐसे आदमी उस सब चीज हुआ पे ना बिगी और जब तू बिगले बाटे दन करेगी कि अनहेल ग्रोथ यानी कि boete ervoor en de kosten van de opruiming moet je ook gaan betalen aan de overheid. Is dit een moeilijke oplossing? Of Suriname mein bhaiya badka badka engineer hai, regering mein baithe bhaiya aur bole hai ga janta ke kasoor hai. Maar wat doet onze regering? Het is alleen wetten en regels te maken. Dat zijn de oplossingen en dat kan de regering. Geen één regering heeft dit gedaan, mensen. Laten we daar even duidelijk maken hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Or adviseur ke upper adviseur kalayaka bhaiya jaise mus kalayaka de swame aise hua pe ek se ek adviseur se ja khali paisa leve hai aur paisa levet ka is sab adviseur wan kaun chi kare hai rakhne ka advice na de pawe hai ki ye problem hum kaise sambhala oplos kari dit moet toch wel kunnen mensen dit moet toch wel kunnen dit zijn allemaal ab dekho bhai leka ee baatchit hue klefia mein bhaiya pani budal hai sab rasta aur salai swakhtar ke pate na kahan hai
सलाइस्वाख्तर के पते ना कहा भैया खाली कलेपुआ तो के चाहिए खोले के तो अब जनता हुआ के का करी से भैया और सलाइस्वाख्तर कहीं दारू पे के सूते कि कहाँ सूते हैं जनता देखे रीबा के पानी सका है और ओकर रास्ता गोतरों सब बुड़ल है देश क्वेश्चन नाम ले ओम ओम ओम ओम द स्लाइस ओप तमाक और कोई जिस स्वाख्तर के पते ना है तो क्लेफिया के जनता अपरे गए भैया अपरे गए केती खड़खड़ खड़खड़ उठाई के और अपरे क्लैप ऊपर करी से तब देखो कैसे पानी निकल के बहरे जा है रीमा में जा है एक बार में एनडीपी के पी के पार्लियामेंटारियर किशन राम सुकुल भी हुए रहा और मिनिस्टर के बैलकनी से कि कम करतुवन कहाँ है भैया कम करतुवन कहाँ है एगो स्लाइस नुआ खोल पे तो के लांटी हर महीना पैसा देवे है तो के सिकोफोन्स देवे है तो के सब कुछ देवे है और स्लाइस वक्त लोग सूते हैं कि एगो क्लब तो जाए के ना खोल पावे है तो क्लेफिया के भीड़ बोंडर्स जो भैया वो सब गए अपरे से स्लाइस खोली से बेस है पार्लियामेंटारी ये किशन राम सुकुल और आलस हेफ्टी फर्स्ट कलेक नामलक ऑफ ए बिल दस निक ने सेख कि कैसे चीज हुआ भइल है ऑफ कॉम सेक्रेटरी क्लेफिया बोले है सेख दन मेर द पोख के सेख नान ओम कांटेक्ट क्रेगन मेट द मिनिस्ट्री फॉर ओवे संग से दरबे वर्ड आंगेगेवन दैट द स्लेसवाक्टर अंडरवेक्स फास मार द बिडबोनस विल नीट लंगर वाक्टन द तो के स्लेसवाक्टर के काम नहीं तो के चाहिए मिनिस्टर के बैल करे के भैया तब वो बताएगा कब हमारा स्टाम बाटी वन अब हम दुकानिया में एगो ठंडा ठंडा बीरी बारेला तो इर्शिला भग्गू समुझ भी आ गया है पंडित तिलकधारी वैसे और भैया फतिंगन रामराज हरिओम हरिओम हरिओम भी आ गया है तो आप सबको हम स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में तरा सुकुल स्वाक्तर बोले बरिशन से बोले काम पे बा जनता बोले के प्रॉब्लम बॉय स्वाक्तर वाके एडवर्ड खवेरक मेर फर्स्ट स्कीम आज फॉर एन ओपन फंसलेशन टरवेल द प्रैक्टिस ons vraagt dat de deuren 2 tot 3 uur eerder worden geopend. Daarna zouden sommige sluiswachten te laat komen of zelf helemaal niet opdagen. To i hamara des ke, hamara des Suriname ke aadat hai bhaiya ki man karo to kaam pe jao aur na man kare to ghare suto. Nahi bole hum sik baati, bemar baati, so khanam to bhaiya, so khanam boli hum बीमार है और उगेल है भैया मछरी मारे अपरे जाए मछरी मारो काम पे सिक मेल कर दी एक को कंट्रोल ना है कि अदमिया सच्चे के बीमार है कि सच्चे के बीमार ना है तरी सोचो तो रजेश किशुन भी आ गया है और वो है लंगाडाम के तो रजेश किशुन सरनाम बुड़ गए भैया चान बुड़ाई से तो ये बातचीत है अभी हम बताइए पूरा देश बुड़ गए भैया और का बोले हैगा अब बोले जनता के कसूर है तो जनता के कसूर ना है रखेरिंग ऑफ रखेरिंग आयल है एक को ना गए को खुई ब्लाइट बनावे भैया कि जितना आदमी बोतल इधर उधर बी गए सबके चाहे लीफर करे दुकान में तब तू ओकर पैसा पइए कर बारे में अब ऐज ब्राइट हमें कर बारे में बताए रही कि आज सरनाम में भैया आदमी लोग के घर में पानी है आदमी लोग डाम पे वोट चलावे है निकेरी के जनता जो है मसाल नहीं रखे रिंग पे का बोले है गा स्टेम कर ले रहा कुछ सबके प्रॉब्लम ऑफ करी ओम द संतोखी ना कर पाए रहा आज तक रास्ता सब ऑफ दम इनके से बुड़ल है भैया कि ओ तो चले के बहुत बहुत दिख है दुख है तो हम जाए तरी नीदरलैंड की ओर हमारा देश सेशन सस्तक की ओर रॉब येतन हम लोग का प्रीमियर जोन है और वो मंगलवार के गए है बोनेर के सिकन हाइस में और उन्हें नादात है तेईस है स्वयं दूर इस वास का प्रेक एन आले रखिस रिएक्शन करे है प्रोग्राम ऑफ से बसुक फन और उबान बोनेर इस दारोप आन खपासी भैया गैला पावरत रहा बोनेर में और हुआ कुछ गड़ गए है तो ई जाए के
हुआ बने रह के अस्पताल में रात अपन प्रोग्रामा सब बदल ली से और यहाँ हम लोग के बाला स्टिंग जो ने भैया हम लोग के गटाई दवाई से और नवा नवा चीज यहाँ पे भरल भैया इस सब मांगे फिनो इ लीफ ते जो पेंशन लीफ ते तो फिन ऊपर करे आप लोग तो न्यूज में देख ले बाटो कि हम लोग के यहाँ जनता गटाई दवाई से तेल के दाम यहाँ पे भैया डाला हो गए है कुछ सस्ता ना हुए है विया जो नदमी पावे हैगा जो आपको क्योर थे ओके समन मांगे ऊपर जाए ओके मांगे फरकोर्त करे हाँ और ये सब चीज हम लोग के जनता के ब्लाइफ चिमार द्रुक एंड द्रुक एंड द्रुक दिस इज नीदरलैंड इज ओक नीत हुआत मुद मेंसे दिस ने ढेर आदमी सोचे थोड़ी बहुत विशाल है नीदरलैंड भैया माजे यहाँ रहे हैं वही जाने हैं कि ओकर संगे का हुए है कैसे यहाँ पे आदमी लोन अपन चलावे है भैया अति हिल हिल मुइलक घर द्वार के बारे में इनफन आलसमेंस बड़ा देर हम तो लोग के दिली हम बोली आप तो लोग के एगो चटनिया हम सुनाई दे चटनी के बाद में अब हम वापस आएंगे मत जाना चलो तरी पिंग पोंग करे भैया पिंग पोंग तो लोग जाने क्या है सुनो कौन जी पिंग पोंग है।

अब देखो यहाँ पर इजन बूढ़ा सूरीनाम में भैले भैया संघ का बोले मिनिस्टर फन ओवी का बोले हे ओरू बोले हम लोग बहुत जबरदस्त बोले प्रेस कॉन्फ्रेंसी कर ली बाटी बोले प्रेस कॉन्फ्रेंसी कर ली बाटी 11 तारीख मई के कि जैसे सब पनिया एक रोज में इस सब सोख ली तेज बहन कौन सा मिनिस्टर इन खानों प्रियोरिटी कोमन प्रियोरिक प्रयोग वर्धन खनोमन ऊपर से अंत पकन तो आप इस सब कैसे अनपक करी मालूम ना भैया मलाते हुए इफ अफ़ोख्त एंड फर्त्राव अब ऑफ द इसे रखेरिंग फन सांग दस मीटर ऑपरेशन कोम व जनता हुआ पे बड़ी दुख में भैया इतना बड़का हाँ काबुल हैगा दुख है हुआ अब देखो और आगे हम चला जाए भैया तो यहाँ बतावे हैं बताई गए हैं कि आदमी हुआ पर रोफुआ अरे कहाँ है हमारा वो है मिनिस्टर फन मिनिस्टर कहाँ है काबले है यूसीसीएन पॉलिसी के हनीश मनोरथ के बाद बतियाला हमारे जनता हनीश मनोरथ बोले है बोले रोफुआ कमती भइल है और यहाँ पे देखे वो फिरन दर तक या रख अतवार के और बोले है यहाँ पे बरू भइलेगा ईशान अलबर खसस्त्रात में दुई को मस्कर वाल आदमी गइल है खवापन मानन प्रोबेर देखो केती फन फ्रो बैठ तमाकन एगो केती घंजत रहा Marofa mislukt hoe je hem volgende verklaring van de slachtoffer zij had samen met zijn moeder en een andere persoon voor een woning toen de verdachte plotseling je karia jamha bronvis bij eil he outral he obole je karia karia veel wapen nikari se op de moeder okar maik oper proberi okar keti okar gatai me se gaintje ke obole otre me bole maya se ose kusti hoe lagal jabarjast maya या रहा हो तो ऐसा तैसन मैया थोरो है तैदर वर्सलिंग ब्राक द कहते हैं केतिया टूट गए है मार दौर दा द फ्राउ से हेफक फरसेख्त स्लाग द रोफर्स एंड नीट इन ऑन द बैय Buit mee te nemen, Nalia Paise, de gewapende verdachte loste daarbij een schot in haar richting. De vrouw werd gelukkig niet geraakt, want dat dag is Auretiake mee. Maar Auretiake gelukkig nalgel bij ja. Obole van Landsbergstraat, Rambranderskracht gebaat he. Bole hega, man zette de achtervolging in. Maar een van de criminelen draaide zich om en vuurde nog twee gerichte schoten af. Een kogel trof HB in zijn linker onderbeen. Bole hij slacht overwerp een ambulance, bolle Chorwan ke dawraai se, maar Chorwan ulte dagi se oke bhaiya, jo rokar adamiya ke ghoade me lagal hai, aur batawe ga sakwa bolle ondar suk hove hai bhai, aur Chorwan ke piche na dawriye jae bhaiya, tu apre dekhe Chorwa dagi sabbe ghoade me lagal hai, bhai ante lag ja, tab to ye admi mar jaat bhai, aur Chor ke ka hua tu jai ke jahal kaat ke, aur dheere se bahre ghumat, tari socho to bhaiya, tu Chor log ke baan chit ee hove hai ga हमारे जनता एगो आदमी के नाम बा भाई ना भौजी वाला भाई भैया ये आदमिया के नाम बा जयन कल्लू मिसिर नाम के मुताबिक तो हिंदुस्तानी है सिर्फ न देर तक यार भैया ये आदमिया का कर ले रहा एगो बड़का और खानी सासी में चोरी के काम कर ले रहा भैया द फोर्थ फॉर द मन वाज एर्दन एक्सटर्नल ऑपरेशन ब्रेक रहा बोले पुलिस एक मर्डर फुरते एक दिप चोरी करत रहा ओ तो भाई वर में आले द्री गस्टोलन फुरतेखन मिल गए हैं और फालन इज दैट द ट्वी दार फन टोटल गस्लोप सेंटर को फन ओ तो वाइस अप चोरी करके भाई वा स्लोप करत रहा और बतावे गए हैं एगो नवा त्यो उता फेस इस चोरी कर ले रहा संतो दरप में तो फुर एक बार लातर ओके सबन खोल खाल के वेलखलीखन स्ट्रात में पाइसे क्वाटा में और इकल्लू के सिपाही पकड़ ली से भैया त्यो उता पासो आने लाइसवेक में चोरी कर ले रहा फोर खयान दिव साल फन त्यो उता फॉक्सी और नेपाल स्ट्रात में क्वाटा में तो अब एक के सिपाही पकड़ी से सिर्फ ने दर तक यार के नाम एक बे नाम बा भाई
भाई नाम बा भैया, तू जाने फिस्टिकल के फिल्मों में भी भाई बोले है तो ये बात है। हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जनता, अब देखो सैमसन का बोले है आंतरिक साया खीन हैंडलिंग दी स्ट्रेट इज में द वेट एन रीगल गेवन तो लोन जाने साया मिक्सन है तियान तो ओ मांगे ओ है का काबल ऑफिसर बनल है तो इरमिया बोले बोले को प्रॉब्लम ना है। हां मस्कर दे रोफर्स लान तू इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मेर तर वोनिंगन लीव खरोफ भैया एगो ना औरो ढेर घर किसी रोफ करी से हिया अपार्टमेंट में भाई हिया से भी आदमी जात अपार्टमेंट हिर करके रहे हैं तो हिया बताए गए हैं, यहां बताए गए हैं सिपाही पकड़ी से रोफ ओवर फाल भैले वोनिंग इन बराकर रात के तपाई स्ट्रात में और बेलवार्डर वेख में हुआ अपार्टमेंटन भैया कॉम्प्लेक्स हैगा। Volgens de aangever trapten de daders de achterdeur van een van de appartementen. De bewoner vluchtte samen met haar partner uit angst naar een andere ruimte nadat zij lawaai had gehoord. De indringers verlieten het appartement uiteindelijk zonder iets buiten te maken. Orbataiga Diego, 26-jarige, onder schot gehouden. Daders maakte tijdens het beroven een rode iPhone. Oude toebehoort aan zijn vriendin. Vrouw raakte in paniek, rende weg en kwam daarbij ter val. Volgens slachtoffer waren twee van de vier daders gewapend. Toen hamara minister bole he. Bole choria. Danko en roofwa. Bole bahut kamti hoige he. De bole se thoro hove he. Bhaiya manorat. Tari kaam करके दिखाओ, सही फर्स्ट दिखाओ, तो ये बात है हमारी जनता, हमारी प्यारे प्यारे जनता। तो यहां पर दिखाए गए हैगा तुलुन जानो है मेलक सेंट्रल वाला अरमिया के जानो तो डायरेक्टरवा डायरेक्टर हुआ एम एल एक्स सेंट्रल के तुलन तुरिया जानो ना बंद रहा भैया और वो छूट गए है भाई फॉर्मालक डायरेक्टर और बोले हैगा मेलक सेंट्रल के बोले हैगा बवारिक फलिंग डायरेक्टर कमिश्नर वाज फ्रस्ट्रेटेड और बोले फ्रेय फुट हो गए है और डायरेक्टर वेट इन द सामन मैं द अदर अंडर डायरेक्टर प्रेसिडेंट कमिश्नर आंगहोदन फ्रॉड कलरा भैया एंटी करप्शन वेट के बारे में से बंद रहा बाकी उत्सव के सखवा दोरो चले हैं। फॉल्कस इशुशील ऑथोरिटी के बदेकन दा इनफ्राइट सेलिंग नीत दा दे स्ट्राफ साख इस बाइंडे दे फॉर्मालिके डायरेक्टर ब्लेव वर्दाख्ते इन दे लोपेंडे अंडरसोक हेट गरेक्टलिके तो ई दुदुवा के तोरिया है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो लो जानो मेलक सेंट्रल के दुदुवा जो ने डायरेक्टर वन सब चोरी कर ले रहा तो स्मोकल कर ले रहा मतलब दुकान में और पैसा उस सबके जेब में जात रहा भैया ऐसे बात है। फ्रेडरिक स्ट्रोप में भैया 20,000 यूरो एको फरलेंग द फ्रेडरिक स्ट्रोप में 20,000 यूरो घर में से सामान चोरी करी से इन ब्रेकर्स और बच्ची एको छोटा के बच्ची लड़का पानी में बुड़ के मर गए भैया ओकर बोट उड़ गए रहा उलट गए बा कोरियल ऑफ द स्ट्यूमेर पे और यहां पर बताएंगे पुलिसिया खेंदुन आन खिफते स्टेल दैट से फॉल्स इज मस्कुल दो द पेनिशियर अंत नारन के बारे में हमारी जनता। आप लोग को छोटा छोटा न्यूज यही खबर बताई कि हमारा प्रोग्राम खत्म होने को आती है। सिपाही फरदख्त पकड़ी से दोस्तों ना कि सिपाही कुछ काम ना करे सिपाही काम करे है मत At can feel beter zijn mensen. Menorat, aapko hum baskullig na karela. Lekin kaam karo to jabardast kaam karo. Aur kaam karo. Karan ki, ichorwan urwan abbe bahut

तो रोशिता शंकर भी आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। अगर हमारा प्रोग्राम को आपको सुनना है तो हमारा फेसबुक पे भी आप लोग सुन सकते हैं। हमारा प्रोग्राम रविवार को हेराल किया जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ से ही कहते हैं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। हमारा न्यूज जो चलते है लाइव जो होता है मंगलवार को शाम को 6 बजे और एल्क फ्रेडक में रख। ओम जसूर नमस्कार बाय बाय स्वाई स्वाई।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बस ही हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों। और ये है लता जी, इसका गाना इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहां पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए है वो शमी कपूर आशा परेक ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या
1: मैं तुम्हें भूल जाऊं तो
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, अगर आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में। क्या होता है इशारों इशारों में, तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रवि की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 5/5 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नेक दिन 5/5 तक का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है दोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: गाना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानो राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों। और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म का नाम है। पतिता का ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

दोस्तों, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी, और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे। कि छोटे छोटी सपने हैं मेरी, अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों। तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना, एक गीत की ओर आओ मिलकर बस सुना जाए।

और दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 और वो है www.fahonfm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दैट वाज वेल मोर ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

खूबसूरत लग रही है।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए,
1: बचाने तो मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिन नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

Oh, Sanjana, I love you. Sanjana, I love you. हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और कायस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं, वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं, जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए। किसी ने पूछा, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है। और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों। और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए कि कहते हैं उम्र के रह उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जयबाद बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कम बखत पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल के ओर। शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे दोस्तों। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका दोस्तों। और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 5 20 20 4 7। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमरो 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो ऐसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है दोस्तों। कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे जियग गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो दोस्तों, दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फोन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग।

बदल न जाना मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 नेकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों। आउट इन गोल का प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं हमारे, तो यहां पर क्या है आओ सुना जाए ओल्ड एज गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बहार प्रोग्राम है।

जन्म ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारों हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एंड महमूद इन गोवा।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर
1: यूं न जाए।
0: नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी कसम लौट
0: हेमंत कुमार।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम, मस्त महीना, नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए, हम चाहते हैं माइती मुकेश की ओर की।

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेलकम कलर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

फार होम्ड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे और निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा मूवी का नाम है नागिन।

अरे आजा मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है हमारे यारों, हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं कि इश्क में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों, इश्क में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो, लता जी तलत महमूद का ये जों है, मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहाँ तक। और वो चलते हैं तदलुत महमूद का और नाइटिगेल वताजी का जोंग थे। आशा परीक सुनील लतीफ ने काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का। ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है आपकी आंखों में क्या है ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं।

दोस्तों, लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपके तो पता है। साथ ही साथ हम चल रहे हैं कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लचा जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिंह तमन ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

ये जोंग थे, उसके बाद प्रेम चलते है मौफी के नाम असली नकली लिखते हों तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है, परमाश श्री मोहम्मद रफी और नैतिक लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसर जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं, मौफी का नाम है असली और नकली।

बान लिया है मूवी के नाम थे। असली नकली के बाद में हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं। और ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में, बस प्यार ही प्यार, पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मूवी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मूवी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी, आप बता दीजिए। मुझे इतना प्यार है और किससे, ये आप ही मुझसे बताइए।

ना रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

वही आप सुन रहे थे ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से भी हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। धड़कन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं तो चला जिधर चले रास्ता।

मैं तो चला जिधर चले रास्ता भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जगा है। मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से एक सपना सा जगा है। लहरा के आया है झोंका बहार का मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी वारिस से आप सुनेंगे।

चंद मूवी वारिस से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में लहरा के आया है झोंका बहार का। ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है आशा भोसले और किशोर डा की आवाज़ में आप सुनेंगे दूरियां नज़दीकियां बन गई अजब इश्तफाक है।

अभी आप सुन रहे थे जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हम पेश करते हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा। और ये गीत हम पेश करके हैं खास करके दो व्यक्ति के वास्ते, यानी विद्या जी और संता जी के वास्ते, जबकि ये दोनों प्रोग्राम मिलकर सुन रहे हैं। तो चलिए ये गीत हो जाए उन दोनों के नाम।

मित्र फीजी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हमने पेश किए है यार मेरे मेरी बाहों में आ जा और ये गीत हमने पेश किए है विद्या जी और शांता जी के वास्ते जबकि ये दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। दिल बेकरार सा है

मात्र फीजी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल बेकरार सा है। मोहम्मद रफ़ी प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं। सुनने वालों, जियाओ जियाओ जिया, कुछ बोल दो।

अभी आप सुन रहे थे जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, गुमराह है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

अभी आप सुनते यानी सुने हैं जाने मन तुम कमाल करते हो। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।

मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह भी आप सुन रहे थे। किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कर्श। आप सुनेंगे मैं 16 बरस की, तुम 17 बरस का।

अभी आप सुन रहे थे मैं 16 बरस की तुम 17 बरस का गपुची गपुची गम गम।

अभी आप सुन रहे थे गपुची गपुची गम गम फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हमने पेश किए हैं। छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे।

अभी आप सुन रहे थे छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे। एक रोज मैं तड़प कर, बेमिसाल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

From the movie बेमिसाल से आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज में एक रोज में तड़प कर। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, निकाह है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं

निकाह है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर जी के साथ में सलमा आगा जी आपको सुनाने वाले थे। तुम्हारा प्यार चाहिए

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ऐसे ना मुझे तुम देखो। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।

मुकेश और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। फ्रॉम द मूवी तुम्हारी कसम से हमने पेश किए हैं। अदालत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, ओ तुमसे दूर रह के।

यहाँ पे सुन रहे थे हो तुमसे दूर रह के फ्रॉम द मूवी अदालत से हमने पेश किए हैं सुन साइबा सुन।

भी सनम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू। आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

अभी आप सुन रहे थे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में आशा भोसले के साथ में।

अभी आप सुन रहे थे फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। गा दीवाने झूम के फिल्म का नाम है फ्लैट नंबर 9। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले हैं द माइटी मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे गा दीवाने झूमके, रात के जुल्फे झूमके, मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ब्लफ मास्टर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे।